ज्ञान अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाई, एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

हर सिमरत तृप्त अगाई संत हो, आत्म राम रविया सब अंतर, कत आवे कत जाई संत हो, आद जुगादी है पी होसी, सब जिया का सुखदाई संत हो, आप बेअंत अंत नहीं पाई है, पूर रहया सब ठाई संत हो, मीत साजन माल जोगन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संत हो, राम कली महला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी, कुमन केर महा अत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ, अंतर सूखा बाहर सूखा, हर जप मलन भये दुष्टारी, जिसते लागे तिन्ह निवारी, प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी, उदरे संत परे हर सरनी, पच बिन से महा अहंकारी, साधु संगत एहो फल पाया, एक केवल नाम अधारी, ना कोई सूर ना कोई हीना, सब प्रगति जोत तुम्हारी, तुम समर्थ अकथ अगोचर, रविया एक मरारी, कीमत कौन करे तेरी करते, प्रभ अंत न पारा वारी, नाम दान नानक वडियाई, तेरिया संत जना रे नारी, राम कली महला।

आनंद सदा गुरती कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटी ज्ञान अंजन सारिया।

कथयो हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किन ना पाया चतुराई ना पाया किन तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम पलाया माया ता मोहनी तने कीती।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

भगत हां तेरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्यो तिखी वालो निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया

है। कित संयम धोता जाय मन तो वो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाय जियो मैले बाहर हो निर्मल बाहर हो निर्मल जियो ता मैले तिन्नी जन्म जू है हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जूऐ हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सत

दाता जे अग्न मह आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावी अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर नित जपे हो जियो, लाहा कटे हो देहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे।

प्यास न जाए, प्यास न जाए होत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बदृष्ट होई।

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल तिहो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावई आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर भाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावै तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावै सतगुरु प्रतख हुंदै बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिक्खा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सन

आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही। फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह भाणा दी बड़े आई। तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण अधारा मेरे गोविंदा। कृपाला मेरे कृपाला दान दतारा मेरे कृपाला। दान दतारा अपर अपारा कट कट अंतर सोहनिया। एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया। जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बीचारा। कहो नानक जो

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा। चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसै का माणु। कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसै जी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला। सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा। अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसै वधाई। सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरै ना आवै जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए। कहो नानक घर प्रभ मेरे कै, नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजवां, हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन, पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता, दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधो, गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु, बिन सरैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलख भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निधान जिनकै, रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्याणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की, चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे, कोई ना जाने। देख चलत दयाल, सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्याव है, पुरख पत परमेश्वरा। सर्ब जाचिक एक दाता, करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई, जिसै प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा, सोए तुझ पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया, सर्व इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई शांति आई, मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे, महा मंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का, गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवां, रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाइए संतन कै, किल वेख सब दुख बनासन। हर नाम जपिए गुरमंतन कै, हर नाम लीजे अम्यो पीजे। रैन दिनस अराधिए, जोग दान अनेक किरिया। लग चरण कमल है साधी है। भाओ भगत दयाल मोहन, दुख सगले पर हरै। बिनवंत नानक तरै सागर, त्याए स्वामी नर हरै। सुख सागर गोविंद सिमरन, भगत गावह गुण तेरे राम। अंद मंगल गुर चरणी लागे, पाए सुख कनेरे राम। सुख निधान मिलया दुख हरिया, कृपा कर प्रभ राखिया। हर चरण लागा भ्रम पौ भागा, हर नाम रसना भाखिया। हर एक चितवै प्रभ एक गावै, हर एक दृष्टि आया। बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा, पूरा सतगुर पाया। मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन सुनिए राम। दयाल प्रभु दामोदर माधो, अंत न पाइए गुनिए राम। दयाल दुख हर सरन दाता, सगल दुख निवारनो। मोह सोग विकार बिखड़े, जपत नाम उदारनो। सब जी तेरे प्रभु मेरे, कर कृपा सब रेण थीवा। बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे, नाम तेरा जप जीवा। राख लिए प्रभ भगत जना,
अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना, सब इच पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा, संत सलोक, चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिया, विपत निवारण राम, संत प्रभ विपत निवारण, तिस बिन अवर ना कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिया, जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहु ना विसरै, गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै, कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक, हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत, पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा, जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक, रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत, सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो, भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो, एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै, जन्म मरण बेकार छूते, फिर ना लागै दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक, धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। शंत, सगल इच मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो, आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा, आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पाओ। राम कली महला पंजवा, रुति सलोक, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर, किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत, जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो, रुति महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो, गुण रंग राते तन तेजन, जिन्नी एक मन त्याया,
सफल जन्म पया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्व पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सात उद्भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत शंत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूर्ण आस जियो, बिनवंत नानक सरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्म है लेख, जो पाणे से मेलिया, विछोड़े पी आप, नानक प्रभ शरनागति, जा का वड प्रताप। संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी, जेठ अखाड़ काम जियो, प्रेम बशोह दहागनी, दृष्ट ना करी राम जियो, नह दृष्ट आवै मरत हावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया, कर पाप जोनी पै पीत होई, दे सासन जाम जियो, बिनवंत नानक ओट तेरी, राख पूर्ण काम जियो। श्लोक शरदा लागी संग प्रीत में, एक तिल रहन ना जाए, मन तन अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए, कर गहलीनी साजन है, जन्म जन्म के मीत, चरणहा दासी कर लई, नानक प्रभ हित चीत। शंत रुत बरस सहेलिया, सावन पादवे आनंद जियो, धान उन्नम बुठे, जल तल पूरिया मकरंद जियो, प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई, हर नाम नव निध ग्रह भरी, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे, प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे, कृपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हर

है कोई साजन संत जन, नानक प्रभ मेलन हार। बिन मिल बे शांत ना उपजे, तिल पल रहन ना जाए। हर साध शरनागति, नानक आस पुजाई। संत रोत शरद अडंबरु, असु कत के हर प्यास जियो। खोजंती दर्शन फिरत, तब मिलिए गुणतास जियो। बिन कंत प्यारे नह सूख सारे, हार कंगन त्रिक बना। सुंदर सुजान चतुर बेती, सास बिन जैसे तना। ईत उत दह दिस अलोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो। बिनवंत नानक तार कृपा,

प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमण राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्स पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागिनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तारकंत जियो सलोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आदि कौ आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली म

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया आपे गुरमुख आपे देवै आपे।

झूठ ठगौरी पाई, लभ लोभ मोहताज विभूते इब तब फिर पछताई। एक सरीवै ता गत मिट पावै, आवन जान रहाई।

गुरु गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा।

उगवै सूर असुर संघारे ऊचौ देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत तेहो लोय आपे करे कथे सुने सोय ओह बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रत्ते पत होय राजन राम रवै हितकारी।

नीत नानक गुरमत मिलिया नीत काम क्रोध काया कौ गाल ज्यों कंचन सुहागा ढाले कस कसवटी सह सो ताऊ नदर सराफ बन्नी सचड़ाऊ जगत पशु अहंकाल कसाई कर कर तै करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किस कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखै सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पी अंत मुए नहीं जानिया हिन मह मुए जा शब्द पछानिया अस्थर चीत मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाय गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थर चीत समाध सुगोनी हर नाम चेत फिर पवह न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी घर दर फिर था की बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ करै मह पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावै गुरमुख बोलै गुरमुख तोल तलावै तोलै गुरमुख आवै जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावै पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोए चित है एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाय मुक्त भया पत स्यों घर जाए सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जाण बंधन काट मुक्त घर आण छाया शूशी जगत भुलाना

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल।

सूचै गुर का कहया अंक समावै निर्मल सूचे साचो पावै गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साची अखोट गुर कहया साकार कमाव हो गुर की करनी काहे ताव हो नानक गुरमत साच समाव हो टूटै नेहो के बोलह सही टूटै बाहा दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुरमत पर हर छाडी ढोल टूटै गंठ पड़ै विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवै टोटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाई ठहक मुई अब गुण पछताय ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार डाहपण तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपण डीठी कंत सुजान डर राख्या गुर आपण निरपौ नाम बखान डूंगर वास तिखा घनी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखै सब कोई जय भावै तै दे गुरु द्वारै देवसी तिखा नवारै सोय टंडोलत टूंडत हौ फिरी तह तह पवन करार भारे तहते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिली तिनकै हौ बल जाऊं तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाऊं मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाऊं जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारै जाऊं जो असारे सो ढासी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस सम्मला तां तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना हुआ।

कंध ग्रंत विण नावे क्यों छूटी है जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं वियोग विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

अपना तन मन आगै देव हस्तर करता तू तनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाहा मैं तन अवगुण चुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों किन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजह गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार।

आई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहू सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौमै खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो हो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूरख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देऊ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेऊ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोई रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हो संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम बखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

निर्मल क्यों कर अंधियारा, यो तत बिचारै सो गुरु हमारा। दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा। सतगुर मिले अंधेरा जाई, नानक हों मैं मेट समाय। सुन निरंतर दीजै बंद, उड़ै ना हंसा पड़ै ना कंध। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावै साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी। किस वक्खर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वक्खर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी। चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। बिन दंता क्यों खाई सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राते एहो मन लाया। मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार। आद को कवन बिचार कथियले, सुन कहां घर वासो। ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए। सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराइए। गुर कै शब्द हम बिख मारे, ता निज कर होवै वासो। जिन रच रचिया किस शब्द पछाण, नानक ताका दासो। कहां ते आवै कहां एहो जावे, कहां एहो रह समाई। एस शब्द को जो अर्थ आवे, तिस गुर तिल ना समाई। क्यों तत्तै अवगतै पावे, गुरमुख लगे प्यारू। आपे सुरता आपे करता, कहो।

वह गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिया सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किछ सूझै।

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावह, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटै गुर शब्दी, आपे परखै बख्श लै।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यो घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर बिद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते होमै जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रि भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावै बोलै सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाए, बारहां मह जोगी परमाए, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मूख द्वार, बिन शब्दै सब दूजै लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया पुर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखै रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन

आपना पुन्न घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागै नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादी कोई न राखै बिन शब्द नाही पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मनमुख ना बुझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मूख द्वार तत ना चीनै मनमुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावै मान साच वखर धन पल्लै होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझै पत होए तां की कीमत करै ना कोय जह देखा तह रहिया सुमाए नानक पार परै सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाण त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू

है सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए, अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक गुरमुख।

दे सतगुर मती इक नानू नाउ बख्शियोन अस्थिर हर सती पौन पानी बै संतरो हुकम करह भगती इना नो पौ अगला पूरी बणत बणती सब इको हुक्म वरतदा।

होई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होई। कहया शब्द ना मानी हऊ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होई। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कह जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाई जा कौ नदर करे पौड़ी। दूजा भाउ रचाय त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा। सब किस तेरा खेल है सच सिरजनहारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै। माया नू फिरै तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह। ओ तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी। रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमती घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए ना आखियन। जिनके चित में भरम तिस दै दितै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी। अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

दास ताय अन दिन सेवा करे सतगुरु की कबह न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिप तो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै त्यों हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जो गुगबार सा आपे गणत कीनी आपे श्रेष्ठ सब साजियन आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजियन पाप पुन गणत गणीनी। जिस बजाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी।

लोभ रत विचों जाए, ज्यों बै संतर धात सुध होए, त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार।

होवे नावे दुख सहाय। नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहे। पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब ताव है। आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है। सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है। निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है। सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा। सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच। नानक हुक्म है जो बुझै सो फल पाए सच। कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच। नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए। बिन मन्ने कच न कच महला तीजा। मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार। होए थाओ कथाओ ना जाननी उन्हें अंतर लोभ विकार।

है संताप, औ हट पट्टण में है भीख्या करे, सो अवतूती सेवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम तंत में है रेख न रूप, महला पहला, सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध उर्द करे निरंजन वास, चांद सूरज की पाए गंड, जिस उदासी का पड़े न कंध, बोले गोपी चंद सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप, महला पहला, सो पाखंडी जे काया पखाली, काया की अगन ब्रह्म पर जाली, सुपने बिंद न दे झरना, तिस पाखंडी जरा न मरना।

आई पौड़ी हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी कर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना, गुरमुख हो सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहे आ सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रो आया, परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रोवे भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई। रोवे राम निकाला पया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रोवे दह सिर लंक गवाई जिन सीता आंदी डौरू वाई। रोवे है पांडव भये मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवे जनमेजा खोए गया एकी कारण पापी भया। रोवे है सेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे भीड़। रोवे है राजे कन पड़ाए कर कर मांग है भीख्या जाए। रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी है बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण माहि सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहि, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहि। महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई। जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतो जान, नानक गाहक क्यों लई सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर देसा, आपे तारी लाइन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता। हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया औत जनेंदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संयोग। नाउ बीज बख्शीस बोल

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक कि

मोहत किछ हन्नै। सच पराणा हुवै नाही, सीता कदे ना पाटै। नानक साहिब सचो सचा, टिचर जापी जापै। महला पहला, सच की काती सच सब सार। घाड़त तिसकी अपर।

नानक जो मर जीव्या सहलाया सोए महला तीजा। ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बफड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन। सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे आसरबत नानक बल जाई, श्लोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै वै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना। बगला काग ना रही सरवर,

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्मटिया अगम अथाह बेअंत परै परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल आऊं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

कित मुख सलाहिए जिस रखे कृपा तार रिजक समाहिए कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुर्बानी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवां भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवां विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दा तार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजन तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हो तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुर पूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवां तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरियां हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवां हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरियां
पाया तुर संयोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवां मनमुखा केरी दोस्ती

देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवह चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवह चेता

हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसा विच बैठा बग न बनी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सुभा विचार।

तारा बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चै जा हर एवै पावे सतगुर सरवर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ माणक सरवर परपूरे खाए खर्च रहे टूट न आवे सरवर हंस दूर न होई करते एवै पावे जन नानक जिस दै मस्तक भाग तुर लिखिया।

सत्तर सत्तर समाने औगण कटे करे शुद्ध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर होमै तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निर्भउ सो भई।

तेरा नाम सतगुर पाए पै मन तन अंतर वस दुखा नास होए हाथ दे आप रख व्यापै भौ ना कोई।

मन माही इकस की सरनाई इकस स्यों कर पिरहड़ी दूजी नाही जाय इको दाता मंगी है सब किश पल्ले पाई मन तन सास ग्रास प्रभ इको एक ते आई अमृत नाम निदान सच गुरमुख पाया जाय वड भागी ते संत जन जिन मन बुठायाय जल थल महियल रब रहया दूजा कोई नाही नाम त्याई नाम उच्चरा नानक खसम रजाई पौड़ी जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन जिसनो तू रखवाला जिता तिने भैन जिसनो तेरा अंग तिस मुख उजला जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हू निर्मला जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोह शंदगी।

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उधरस नाई पौड़ी ना तू आवे वस बहुत कणावणे ना तू आवे वस बेद पढ़ावणे ना तू आवे वस

होगा हरक आनंद। हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत, हुक्मे आवन जान रहाय। नानक जाको भगती लाई पौड़ी, हौ तिस ढाडी कुर्बान। जे तेरा सेवदार, हौ तिस ढाडी बलिहार। जे गावे गुण अपार, सो ढाडी धन धन। जिस लोड़े निरंकार, सो ढाडी भागठ। जिस सत्या द्वार बार, वो ढाडी तुद त्याई। कलाणी दिन रैनार, मंगै अमृत नाम। ना आवे कदे हार, कपड़ भोजन सच। रहंदा लिवै धार, सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाय। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुर पूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे नरक सुरग अवतारी भाणे धरन परे। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे। जिनस रहन तेरा नाउ सदा सद जापी है। तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजे जिस नाउ मन वसे तिसह प्राप्त लाल। जो गुर शब्दी रसे खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी। हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरा वादी जेठो पौ पोलू है। हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी। जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारण। जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारण। जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो। जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो। जिसनो एको रंग भगत सो जानण।

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीत आविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जा राविया मिलिया आए संजोग जा तिस पाविया।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थी आ थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजित पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भाग

ध्यान में लो। गुर का शब्द गुण की नरी, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर, काट काट कस दी नरी। कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे। एक बूंद भर तन मन देवो, जो मद दे कलाली रे। रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे। मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे। निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा। सुखमन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा। औदू मेरा मन मतवारा, उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया। त्रे भवन भया उजियारा, रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी। पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता। छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत। सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता। उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ाव अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित धर्म तारन चिंता मन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटे जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

परमियले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावोगो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावोगो वैरागी रामह गावोगो।

दुए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठसठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिओ राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कमन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तउ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना की।

न हिरण हुई कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूट है, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाऊ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कहो रब दास सब है नहीं समझस, भूल परे।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद ध्यावे। कवन योग कवन ज्ञान ध्यान।

सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

शरीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बजानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई।

जन कै संग बस्यो मन ते नाही बसारियो रहाउ वर्ण चिन्ह नाही किस पेख्यो दास का कुल ना बिचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सुवारियो महा बिखम अग्न का सागर तिस ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख न रहियो रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद पयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को मन बीतो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रास उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुइ कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

दीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

कीता, बिन सह दुख विपरीता, सब अर्पो मन तन चीत रहाव, कोई विरला आपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर भज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होहि पनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अष्टपदिया महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम मेरे मन तन नाम आधारी, खिन पल रह ना सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम संभारी रहाव, हर हर हर हर हर मन त्यावहु, मैं हर हर नाम प्यारी, दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर, गुर कै शब्द सुवारी, मधुसूदन जग जीवन माधु, मेरे ठाकुर अगम अपारी, एक बिनो बेनती करूं गुर आगे, मैं साधु चरण पखारी, सहस नेतर नेतर है प्रभ को।

है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवै जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींच।

हर अमृत सर नावहारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी, कर नारायण बोलारी, मेरे ठाकुर कै

बिचारी सत संगत मिलै ता दृढ़ता आवै हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी जब घर मंदर आग लगानी कड कूप कड़े पनेहारी साकत सियो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो दसी तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारी पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारी गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

अब एका नगर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारी मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाई सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साक।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी।

सत संगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचे, जब उनवै कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यों ज्यों निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डे बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संते संत मिले मन बिगसे, ज्यों जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सत

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

अवर कहना झूठियां नित करे जम सिर मार रहाउ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण से वोह साध के ताज लोभ मोह बेकार सब तजहो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जा कै सिमरन मिट है तंद जा कै सिमरन छूट है बंद जा कै सिमरन मूर्ख चतर जा कै सिमरन कुल है उधर।

रे नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण मह सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला।

आधार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिनसे सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बेमोहताज नहीं किश कान सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बेकार तज सब।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आइए सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हथी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली भाई

मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुह लेख पई ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चली है तौ गुण नाही अंत हरे चित

ना छोड़स किसन प्रीत ज्यो रे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चरणी।

का पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग। शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

कृपा एही, बिन दर्शन कैसे रहूं स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई।

पैर मनोवा जपत रहा तेरा नाम। लूण हरामी नानक लाला बख्शे हैं तुद वडियाई, आद जगाद दया पत दाता तुद विन मुक्त ना।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन ना होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए मार

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाए वडभागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए अण दिन सच्ची भगत कर सच्चा लए मनाए आपे सिष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावै तैं दे मारू महला तीजा पिछले गुनहा बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरनी लाग रहा विचो हो आप गुआए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरी।

गण गंधर बे जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

सतगुरु पुरख दयाल प्रभु हर मेले ढिल ना पाई। जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भाग हीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए। ओए जमदर बदे मारी है हर दरगाह मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय। हर तार कृपा जग जीवना

सुनाई प्रभु गुरमत हर हृदय सुमानी जप हर हर कथा बड़ भागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम सुमानी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाउ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईए कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़ भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी मन मुख भाग बिहूणिया तिन दुखी रहन विहानी।

सुगुड़ सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सेव

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उदारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरल द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

गुण भ्रम छूटा ज्यों प्रभ भये सहाय मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने किसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाध रोग उपजे तन पीत।

बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग हर भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावत हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी।

तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रहाओ। जब ते साधु संग भया तौ तो

दिसताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीरथ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहा दूजा। मारू महला पंजवा, कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा, जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवह तब ही पत पूरी, बिसरत रलिय खाक रहाऊ, रूप रंग खुशियां मन पो।

माया रंग बिरंग खिने मह ज्यो बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़ियाई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

को मात गर्भ में है जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी चरण कमल उरे अंतर धारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहु बिद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन न जाई प्रभ बिसरत नरक मह पाया तह मात न बंद ना मीत ना जाया जिस को

अवदारन जिस भावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काढ़ नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मारू महला पंजवा कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आज्ञाकारी।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला।

सगल त्यानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिन का ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर।

तरन पज संग साधु भव सागर उतरह पार। मेरे मन नाम हृदय धार, कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ, अवर सगल विसार रहाउ। जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू अपने आप निवार। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबहु ना।

महा भोजन माहे तुलोहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण उचा।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदियां महला पहला, कर पहला।

अठ सठ तीर्थ बहु कणा ब्रह्म था के भेखा साचो साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िया हर बुझिया गुरमति नाम उदारा गुरपुरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा।

या समुंद मझार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाओ सतगुरु है बोहिथा शब्द लगावना।

आई तंदै तावत जग बहंदेया ना बूझै विचार जम्मन मरन बसारिया मनमुख मुगद गवार।

राम बिना कोह काश नहीं, गुरपुरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगण सुपार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे, बिन भागा तन नाही। जिनके नाम ना मन वसै।

सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

देख मुख तमान तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुध भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे

विसारिया नित देवै चढ़ै सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिन्ह विच पाया जां कृपा करे तां सेवीऐ सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचों आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब

चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मिल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है कर देखै सोई। जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई, सो साचा सलाही है साची पत होई। पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला, पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवे।

थी पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ ना लबई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत।

कर हीरे, ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पीटे, दुर्मत कुमन कीरे, जसंतर भवे पाठ पढ़ थाका, तृष्णा हुए बधेरे, काची पिंडी शब्द ना चीने, उदर भरे जैसे टूरे, बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ, कोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी, कापड़ फार बनाई छिंथा, चोली माया तारी, घर घर मांगे जग प्रबुद्ध, मन अंधे पतहारी, परम फलाना शब्द ना चीने, जुए बाजी हारी, अंतर अगन ना गुर बिन बूजे, बाहर कुवर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी, क्यों कर चीन से आपे, निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे, अठ सठ तीरथ परम बगूचे, क्यों मल धोपे पापे, छाणी खाक बेभूत चढ़ाई,

सतावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कितना मिटही हुक्म ना बूझै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया।

पानी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करी संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है अफरे उपार अफार टरे रहाऊ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करूं हरी तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ लै जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरी कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड कतंब स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाणे बिन हर नाम ना काल करे जेता मोह हम मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख धूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बुरु दो नैनो नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार सुमारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख ना मितई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पए रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम बसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमर हो गुर बचन समारोह संगत हर जन पाव करे।

सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा धन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए

पाई बिन सतगुर पल्ले ना पाई। सतगुर कै पाण मन वसै ता एहनस रह लिवलाई। राजंग रंगंग रूपंग

वेद संभाल है बिख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठी बागा पहर है कजल चर है यह संसार तिसै की कोठी जो पैसे है सो गर्भ जर है रैयत राजे कहां सबाई दोह अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर के

जन सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तमारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

बिरथा जन्म गवाया, अग्गे बिन नावे को बेली नाही, बूझे गुर बिचारी जियो, अमृत नाम सदा सुखदाता।

तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्रब जन्म अभ पायो रे मुड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यो उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कानर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनग्रह राख लीनो पयो साधु संग हर नाम

जिन यो पायो शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिनसह जिस बसह मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करहें ओचार सिमर स्वामी सुख सहज कुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है।

गोपाल गुण नित गाऊ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागनी का काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगननी का हर जस गुर ते मांगना जागना जागननी का हर कीर्तन मह जागना लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

पात परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हों बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भव मन माही, तिस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मान, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

जो मन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जाटो करता दिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर

भय देवानी, शब्द सहज रस अंतर मानी, आपे मुकत तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई, आप निरालम गुर गम ज्ञाना।

साहिब सबना सिर भाई मिले भव जाई हे भूले चूके मार्ग पावे आप भलाए तू है समझावे।

दाता तिल ना तमाई, परपुर धार रहया निह केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई। क्या सलाही अगम अपार है।

जल पड़कारी मनमुख तक के कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गल मन स्यो लूजै मनसा मन है समाई है माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत का

ब्राह्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

खेल तमाशा तुंडू कारी, बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यो निस सुपन पखलाई है, तिनको तख्त मिली बड़ियाई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी, त्रे पवन ताड़ी लाई है, साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिले सुख पावा, साचे साचे तख्त बढ़ाई, हम मैं गणत गवाई है, गणत गणिये सहसा जीए, क्यों सुख पावे दुए तीए, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपूरे ते पत पाई है, जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता, तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई है, जीवर सायन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना परांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है, रख रख पैर तरे पौ तरना।

सच्ची वडियाई साचै तख्त वडाई हे। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरतै गहर गंभीरा। सच्चा साहेब सच परखै साचै हुक्म चलाई हे। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मन्ने सो सूरा। साची दरगाह सा

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणै मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर यदि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे।

ठाके कर्म कमाई है, कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है, माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है, एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवै चलावह, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है, कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मनमुख

ले शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण।

सुरत समाई है कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बिसरे दुख पाई है भोजन साच मिले।

पर हर दुख डालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल कोई रह भगत लिवलाई है। गूजो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी। आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमें दोह मार्ग पचह पचाई है। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यूं तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न को

देखो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी यो पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैस है तखत सो शब्द विचारे तत लह

कर वास न पाई पेयड़ सिर माराही खाजे पेंजे रली करीजे बिन अब भगती बाद मरीजे।

अंग शब्द कर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे ना कोई, साच शब्द पेंजे पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हम मैं गर्भ निवारा ही, गुर किरपा ते हुक्म पछाणे।

जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सुवंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारी।

आए अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाज हो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

पावहु साच बखर के वपारी बिरले लैलाहा सौदा की नाही हर हर नाम बखर लै चलो दर्शन पावहु सहज महलो गुरमुख खोज लह जन पूरे यो समदर्सी की नाही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानो इं आत्म रामै लीना है नारद सारद सेवक तेरे।

नाही। एक दर सेग है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलहो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हौ मैं मार करहो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अग्न पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहि मरह मर जाहि। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर पवजल लंगस पारा।

मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतियाराही साकत माया कौ बहुतावह नाम विसार कहां सुख पावह त्रिहो गुण अंतर

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अपरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर

आवे मनसु प्रभे अपरे अपाराही गुरते भूले आवहु जावहु जन्म मरहु फुन पाप कमावहु साकत मूड अचेतना चेत है दुख लागे ता राम पकाराही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया कराराही हम मैं ममता कर दायाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकाराही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हाराही हर गुरपुरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मैं पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पीहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै, पत खोई आवत जाता ही। कूड़ कलर

ही साखत फांसी पड़े अकेला जामवास किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूझे आज काल पच जाता ही सतगुर बाज ना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देव है कर कृपा यूं सलले सलल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग सक

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जाको अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्ध ताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

है, राम नाम घट अंतर पूजा, अवरना दूजा काहा है, ओढ़ना कथन है सिफत सजाई, ज्यों तुद भाव है रह रजाई, दरगाह पहंदे जान सुहेले, हुक्म सच्चे पातशाह है, क्या कहिए गुण कथ है कनेरे, अंत ना पाव है बड़े वडेरे, नानक साच मिले पत राखो, तू सिर शाह पातशाह है, मारू महला पहला दखनी, काया नगर नगर गाड़े अंदर।

जाने जो किछ करे सो अपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाए रोवे नाम।

तई कबहू विण पाणे परमाएंदा ज्ञान विहूणी पवै सबाई साचा रव रहे लिव लाई निरपो शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मलाएंदा अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप ना रेखिया मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साथ मिले सो साथी पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरहु विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा शिष्ट उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझे रोग ना होई ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराली शब्द रत्ते हर रस मतवाली रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

सच्चे घर बारा, नानक निर्मल नाद शब्द धुन, सच रामै नाम समाईंदा, मारू महला पहला, जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुगत समाई, रहो निराल मराया, जग तिसकी छाया जिस बाप ना माया, ना तिस भैन ना भ्राऊ कमाया।

ना तिसे उपत खपत कुल जाती, ओहो अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सत संतोख शब्द अत सीतल, सहज पाए लिवलाया। त्रै वरताए चौथे घर वासा, काल बिकाल किए एक ग्रासा। निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत भले हर प्यारी,

संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई कसकर चोर न लागै ताको धुन उपजै शब्द जगाया तू एक अंकार नरान मराजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थर तान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसह परधाना।

पछाणै सब तिसका चोज सवाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखणहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभतारी घट

उन निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवे आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिय अकल गाए जमते क्या डरिय।

मोख मुक्त क्यों पाई है, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है, गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर, मुक्त पये सुख पाया, गुरमत कृष्ण गवर धन तारी, गुरमत शायर पाहन तारी, गुरमत ले हो परम पद पाई है, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मरारी, जम के फाहे काट है हर जप, अकुल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत यगन निवार समाई, मन मुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूजै शब्द पतीजै, उस्तत निंदा किस की कीजै, चीनो आप जपो जगदीसर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मांड खंड सो जानो, गुरमुख बूजो शब्द पछाणो, कट कट भोगे भोगण हारा, रह अतीत सबाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, सरवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंग।

हर अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यो चमक चंदायन देखे, एहन सजोत निरंतर पेखे, आनंद रूप

नारी देख अदिष्ट रहो निव लागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनुभव पद पावे आप गुआई ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ भंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवाके जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पव जल भारत राया एहो पव जल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाई है नानक गुरमुख मुक्त परायण हर कूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया, अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया, निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जस संगत पाई है।

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुपत प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम त्याए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेव हो संक ना कीजै, आसा माहि निराश रही जै, संसार दुख बनासन सेव हो, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे भावै तिस वडियाई, कौन सो दूजा तिस समझाई, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो होमै, पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई ही।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा निबलागी। अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किन पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हौ मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै। सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुपाई हे पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है पढ़ था के शांत ना आई हे एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द होम किन मारी अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मुए हर नाम निवासी हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए।

को जासी दूजे भाए बांधा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई हे आपे करता कर कर वेखे जिसनो नदर करे सोई जन लेखे गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजै।

सुख पाया सहजी साच समाई ही तंदै तावत मन भया मनूरा फिर हुए कंचन पेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख दिन गुर बूझ ना पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे।

बिनसे तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सत्य आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हौं तिन बलिहारी जो साचा लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना

आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा सच

वेद बाद सब आख वखाण है, ना अंतर भीजै ना शब्द पछाण है। पुन पाप सब वेद दिरड़ाया, गुरमुख अमृत पीजै ही। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै ही। मारू महला तीजा, सच्चा सच्चा तख्त रचाया। निज कर वसिया तिथै मोह ना माया, सद ही साच वसिया घट।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेख हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपना आप पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करी सब दुख सुबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई सदा सा।

द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यों चित न लागे दूजे पाए घणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाण हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राताई जिसनो नजर करे सो गुण निद पाई हम मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण का एको दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते।

आई रत्न अमोलक अग में अपारा कीमत कमन करे विचारा गुर कै शब्दे तोल तलाई अंतर शब्द पछाताई सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़ है शब्द ना बूझ है।

तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगमय गोचर कीमत नहीं पाई आपे अगमय थाहाहि आपे सच्चा सच वरताई एक जन साचै।

लाई, सच्ची भगति आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जान है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाही, आपे साजे सिट अपाई, बिरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्ची नाई गुरमुख देव मन वसाई जिन मन वसया से जन सोह तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा शब्द सलाही गुणदाता लेखा कोई न मंगे ताहाई ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावे अलाखे अपेवा जिनको नदर करह तू अपनी गुरमुख अलख लखाही।

दूर से वे घोर अंधारा, बिन शब्द कोए न पावे पारा। जो शब्द राते महाबैरागी, सो सच शब्दे लाहाई। दुख सुख करते तुर लिख पाया, दूजा भाव आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते, मनमुख का क्या विसाहाई। से मनमुख जो शब्द ना पछाण है, गुर के पै की सार ना जान है। पै बिन क्यों निरभउ सच पाई है।

आई सतगुरु पूरा शब्द सुनाई अन दिन भगत करहो निवलाई हर गुण गावे है सद ही निर्मल निर्मल गुण पातशाही गुण का दाता सच्चा सोई गुरमुख विरला बूझे कोई नानक जन ना

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्म ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

काचन काची अगम अगोचर वे परवाह भगत वच्छल आथाहाई सतगुर पूरा साच दृढ़ाई सच्चे शब्द सदा गुण गाई गुण दाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिख दासाहाई सदा हदूर गुरमुख जापै शब्दे सेवै सो जन त्रापै अन दिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहाई अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई मन हथ कर्म फिर जोनी पाई बिख्या कारण लब लोभ कमावै दुर्मत का दुराही पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई गुर कै शब्द हर नाम चित लाई मन तन हर रविया काट अंतर मन पीनै भगत सलाहाई मेरा प्रभ साचा असुर संघारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभ साचा सद ही साचा सिर शाह पातशाही से भगत सच्चे तेरे मन पाई दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई।

मरा पद हुए गुर कै शब्द रस ताहाए आप पछाणे सो सब गुण जाने गुर कै शब्द हर नाम बखाणे अन दिन नाम रत्ता।

सील संतोख सब ताहाई, हम मैं मोह उपजे संसारा, सब जग बिन से नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला,

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिउ सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले वडियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द न कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माही समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़ है बाहर तावे है, मन मुख अंधे साध ना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

हर पाया, हर जप जाप सुमाही, मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कारक

ते बैरागी निज कर वासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस भावै सतगुरु मलाए जा तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाई, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेख थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेख पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

करता ज्यो भावे तिवे चिलाईंदा सिमरत सास्ते अंत न जाने मूर्ख अंधा तत ना पछाने आपे करे कराई करता आपे परम पलाईंदा।

अपाई सब खेल तमाशा तेरी वड्याई आपे वेख करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर एक बाजी पाई पूरे गुरते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे सिंह चित लाएंदा बाजे बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह एक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चौ होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वड्याई नामो नाम त्याएंदा।

कह क्यों सुख पाइए बिन नावे दुख पाईंदा आप करी न आप कराई गुर प्रसादी किसे बुझाई गुरमुख

गणत चुकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा।

जाई। गुर कै पाणे चलै दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। आप सिरंदा सच्चा सोई, आप अपाए खपाए सोई। गुरमुख होवै सो सदा सलाही,

नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसाईंदा मारू महला तीजा हर जियो दाता अगम अथाह ओस तिल ना तमाए वे परवाह तिसनो अपण ना सकै कोई आपे मेल मलाईंदा जो किछ

पारा निःचलवा सा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरले किने थान पाया इत साथ निभे सलाही सच्ची हर सच्चा मन वसाईला मेरे करते एक बनत बनाई इस देही विच सब वत पाई नानक नाम बन जह रंग।

अनदिन हर सेवे हो सच्ची बाणी, हर जियो शब्द मलाएंदा, हर चेत है तिन बले हार है जाऊं, गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं, तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाएंदा, हर के गुण गावां, जे हर प्रभ पावां, अंतर हर नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए, साचे नाम समाएंदा, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदनी नदर मलाएंदा, वड्डे भाग एहो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसै बुझाएंदा, एक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे पाए, एह वेला फिर हाथ ना आवे, पग खिसे

मूल है माया, दूजे पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाई, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाई, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवे गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुर बाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े हन दिन वाद समाले, नाम ना चेते बद्दा जम काले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाईंदा, गुरमुख एक कस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा

आई हित रंग साचे माहे समाई पूरे भाग को एहो रंग पाई गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान।

रहे आसमाई गुर प्रसादी पाया जाई आपे मेल मलाए आपे शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेव है जो तुद भाव है, गुर कै शब्दे सच समाव है, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला हा पाया।

तेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाए सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चै ना इस माया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई।

लाभ रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागी। नानक तिनकी फिर गत हुए, जे गुरमुख रह सरनाई। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची। हो दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर सरनाई। अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहजे सहज समाई। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सी जय नाही, गुर चरनी चित लाई। जिस भावै

ज्ञान रतन मन परगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सोवै गुरमुख नाम समाए समावै नानक नाम त्याई भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख वखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसया लिवलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया तटवासी तिस बिन अवर ना कोई दाता हर किस ऐसे

तिन सुख पाया, सहजी ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भउ भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह।

कारण तमताई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभे अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में है सोब सुहाई है जय जयकार जपो जगदीस बल बल जाई प्रभ अपने ईस तिस बिन दूजा अवर ना दिस एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीव है जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा।

किरत संजोगी भय इकत्तरा करते भोग बलासाही जो पिर करै सो तन तत मानै पिर तन है सिंगार रखै संगानै मिल एकत्तर वसै दिन राती प्रियो दे तन है दलासाही धन मांगै प्रियो बहु बिद तावै जो पावै सो आन दिखावै एक वस्त को पहुँच न साकै तन रहती पू

ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु न समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही।

जिस चीते आवह तिस पौ केहा अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरे लै टूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीव अमर भया बनासी थी वै ना को आवे ना को जावे गुरदूर।

सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहि। बारहा कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया। परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार।

मन निर्मल होवे गुर काटे अपमान नाहि गुर का सेवक नरक ना जाई गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई गुर का सेवक साध संग पाई गुर करता नित जी दानाई गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए सतगुर भेट हर जस मुख भणिए कल कलेश मटाए सतगुर हर दरगाह देवे मानाई अगम अगोचर गुरु दिखाया भूला मार्ग सतगुर पाया गुर सेवक को बिघन न भगती हर पूर दरड़ाया ज्ञाना ही गुर दृष्टाया सबनी ठाई जल थल पूर रहया गोसाई ऊच ऊन सब एक समाना मन लागा सहज ध्याना ही गुर मिले सब तृष्ण बुझाई गुर मिले नह जो है माई सत संतोख दिया गुर पूरे नाम अमृत पी पाना ही गुर की बाणी सब माहे समाणी आप सुनी तै आप बखाणी जिन जिन जपी केई सब निस्तरे तिन पाया निचल थाना ही सतगुर की महिमा सतगुर जाने जो किछ करे सो आपन पाणे साधु तूर जाचह जन तेरे नानक सद कुर्बाना ही मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद निरंजन प्रभ निरंकारा सब मह वरतै आप नरारा वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा लख चौरासी जोन सबाई मानस कहो प्रभ दी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाएंदा कीता होवै तिस क्या कहिए गुरमुख नाम पदार्थ लहिए जिस आप भुलाए सोई भूले सो बूझै जिसह बुझाएंदा हरख सोग का नगर एहु किया से उभरे जो सतगुर सरनिया त्रिहां गुणा ते रह निरारा सो गुर

यज्ञ यथाह क्यों मिली है प्रभु भी परवाह। काट सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाईंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दुइ समसर सही है। हउ मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सहज समाईंदा। हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी। अनक रंग करह बहु भांति ज्यो पिता पूत लडाईंदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लए मलाई। गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाईंदा। तू आपे करता कारण करना श्रिष्ट उपाय धरी सब धरना। जन नानक शरण पया हर द्वारे।

कारना मुख सलाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहिब सगल उदारना कर कर वे कह कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संत सभा जह बैस है प्रभ पासी आनंद मंगल हर चलत तमाशे गुण गाव है अनहद धुन बाणी तह नानक दास चितारना आवन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देख खेल अपारा आप उपाय उपावन हारा अपना किया पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे किस सलाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन पए निहाला एह भगतां की कालना गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सब बंधन एहो परम मोह पर जालना।

सब एको है पालना, डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख नरारी, आप छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ इस कालना, ऐसा को वड भागी आया, आठ पहर जिन कसम ते आया, तिस जन कै संग तरे सब कोई, सो परवार सधारना, एह बख्शीस कसम ते पावा, आठ पैर कर जोड़ ते आवा, नाम जपी नाम सहज समावा, नाम नानक मिले उचारना, मारू महला पंजवा, सूरत देखना भूल गवारा, मिथन महारा झूठ फसारा, जग में कोई रहन ना पाए, निह चले एक नारायणा, गुरपूरे की पौ सरनाई, मोह सोग सब परम मटाई, एको मंत्र दरड़ाए औखद, सच नाम रिद गायना, जिस नामे को तरसह बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुरपूरे ते पायना, होर द्वारा कोई ना सूजै, त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै, सतगुर साह भंडार नाम जिस, एहो रतन तिसै ते पायना, जाकी धूर करे पुनीता, सुर नर देव ना पावह मीता, सत पुरख सतगुर परमेश्वर, जिस भेटत पार परायना, पार जात लोड़ मन प्यारे, काम तेन सोही दरबारे, तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे, नाम कमाए रसायना, गुर कै शब्द मरह पंच धातु, भै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु, पारस जब भेटै गुरपूरा, ता पारस परस दिखायना, कई बैकुंठ नाही लवै लागे, मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे, एक अंकार सतगुर ते पाईऐ, हौ बल बल गुर दरसायना, गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए लए सो सेवक, जिस वड भाग मथायना, गुर की महिमा वेद न जान है, तुष मात सुन सुन वाखाण है, पार ब्रह्म अपरम पर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लायना, जाकी सोए सुनी मन जीवै, हृदय वसै ता ठंडा थीवै, गुरमुखों अलाए ता सोभा पाए, किस जम कै पंथ ना पायना, संतन की सरनाई पड़या, जियो प्राण धन आगै धरया, सेवा सुरत ना जाना काई, तुम करो दया किरमायना, निर्गुण को संग लेहो रलाए, कर कृपा मोहे टहले लाए, पक्का फिरो पीसो संत आगे, चरण धोए सुख पायना, बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम सरनाया, सदा सदा संत है संग राखो, एहो नाम दान देवायना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे, सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायना, मारू सोलहे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरह धरती अर आकाशा, सिमरह चंद सूरज गुणतासा, पौन पानी बैसंतर सिमरह, सिमरह सगले अपार जना, सिमरह खंड दीप सब लोवा, सिमरह पाताल पुरियां सच सोवा, सिमरह खानी सिमरह बाणी, सिमरह सगले हर जना, सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरह देवते कोड़ ते तीसा, सिमरह जाख दैत सब सिमरह, अगंत न जाई जस गना, सिमरह पास पंखी सब कूता, सिमरह बन पर्वत अवतूता, लता बली साख सब सिमरह, रव रहे आस्वामी सब मना, सिमरह थूल सूखम सब जनता,
सिमरह सिद्ध साधक हर मंता, गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे, सगल पवन का प्रभ तना, सिमरह नर नारी आश्रमा, सिमरह जात जोत सब वर्णा, सिमरह गुणी चतुर सब बेते, सिमरह रैणी अर दिना, सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा, सिमरह काल अकाल सोच सोचा, सिमरह सौन शास्त्र संजोगा, अलख न लखिय एक खिना, कर्ण कराम नहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी, कर कृपा जिस भगती लाभ हो, जन्म पदार्थ सो जिना, जान कै मन बूठा प्रभ अपना, पूरे कर्म गुर का जप जपना, सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुरना जोनी परमुरुना, गुर का शब्द वसै मन जाकै, दुख दर्द प्रमता का भागै, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सो तनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन बूठा, सो पूर कर्मा नाशिना, जल पल महियल स्वामी सोई, अवरमा कही है दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काटे ओ भ्रम सगला, अवरना दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

पद पावूं, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाती, तिन साधु चरण ले हृदय पराती, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्भला, कहो नानक भगत पये सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है तै आप बखान है, नानक दास दासन को करियो, हर भाव है दासा राख संगा, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मसल्ला, मनसा बार निवार हुआसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खदाई पाक खरा, सरासरयत लेख मावहु, तरीकत तर्क खोज टलावहु, मारफत मन मारहु अबदाला, मिलहु हकीकत जित फिर न मरा, करान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बंद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले महमौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मह जानहु सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथै खैरी, पंजवै पंजे इकत मकामे, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोर हो खाना, दिल दरे आओ तो वो मैं लाना, पीर पछाण पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, नपाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जा को मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाय कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे थापे साजी, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटा का मालका, चरण कमल सरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारी, जप हर हर भौ नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, तिसह प्राप्त

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जयाल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते ते

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नान

सतगुर प्रसाद चरण कमल हृदय नित तहारी गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी तन मन अर्प धरी सब आगे जग मह नाम सुहावना सो ठाकर क्यों मनो वसारी जियो पिंड दे साज सवारी सास ग्रास संभाले करता कीता अपना पावना जाते बिरथा को नाही आठ पहर हर रख मन माही साध संग भाजे चुत स्वामी दरगाह शोभा पावना चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नाम निधान सहज सुख नौ निद सर्व कल्याण जे मन मह चाह मिल साधु स्वामी रावणा सास्त सिमरत बेद बखाणी जन्म पदार्थ जीत पराणी काम क्रोध निंदा पर हरिय हर रसना नानक गावना जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती पूर्ण पूर रहिया दिन राती जो जो जपै सोई बड़ भागी बहुड़ना जोनी पावना जिसनो बिसरै पुरख बधाता जलता फिरै रह नित ताता किरत कण को रखै ना कोई नरक घोर मह पावना जियो प्राण तन धन जिन साजिया मात गर्भ मह राख निवाजिया तिस स्यो प्रीत छाड़िया नराता काहू सिरै ना लावना तार अनुग्रहो स्वामी मेरे कट कट वस है सबन कह नेरे हाथ हमारे कछु है नाही जिस जनाए है तिसे जनावना जां कै मस्तक तुर लिख पाया तिस ही पुरख ना व्यापै माया नानक दास सदा सरनाई दूसर लवै ना लावना आग्या दुख सुख सब कीने अमृत नाम बिरले ही कीने ताकी कीमत कहन ना जाई जत कत ओही समावना सोई भगत सोई वडदाता सोई पूर्ण पुरख बधाता बाल सहाई सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दुख सुख लिख पाए तिल नहीं बदह कटह ना कटाए सोई होए जे करते पावे कह कह आप मन्यावना अंध कूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना।

पहला गिण गाहक गुण वेचिया तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख बकाई, गुण ते गुण मिल पाइए जे सतगुर माहि समाए, मोल अमोल ना पाइए बनजना लीजै हाथ, नानक पूरा तोल है

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा। सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया।

गुर तीरख दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बने आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यों प्रीत उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन तृपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मन मुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा। कागो होए न उजला लोहे नाव ना पार। पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़ भय वसै नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचै सब कोय। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटै सोए। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवै शांत पाई जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा। हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुख चार। नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए। झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नदर करे। आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै। अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै। सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल। साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महबत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे। खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजै खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे। तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदै लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आत। कालर लादस सर लांगणो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभै जम मारसी नानक मेलण नाम। पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नव निद नाम। इक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम। इकनी सुनकै मन्या हरि उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै हेकै पद रहीद। अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल भेद से बाजणु कणो धड़िय जोए। नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोए। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखी वड्डा वे परवाह। सतगुर मिले ता पार पवा
ਮਜ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਟ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮਿਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग मह नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे पल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर धन पल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिक विहाज है बिक संग्रह बिक स्यों तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाएनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजे परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द।

आवई, नह सुख वसै मन आए, सदा चिंत चित वधारह सहसा कदे न जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी, सतगुर नु मिलै ता शब्द कमाई, सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहि समाय। महला तीजा, जिन उपाई मेदनी सोई सार करे, एको सिमरहु पाई रहो तिस बिन अवर ना कोई। खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सुनाई है सदा सदा ओह ऊजला, मैला कदे ना होए। सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए, देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझिया जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी, अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै, हर हर नाम त्याई हम मैं अज्ञान गुआपै। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै, जिन चाखिया से निरपो भय से हर रस त्रापै। हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा, लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना व्या जय कोए, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए। गुर शब्दी विचार पौड़ी, अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय। गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव, खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव। सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय, अमृत का रस आया मन वसिया नाउ। सलोक महला पहला, हौ मैं करी ता तू नाही, तू होवे हौ नाही। बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे, बिन गुर तत ना पाईए अलख वसै सब माहे। सतगुर मिलै ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे, आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए, नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रे भवन तिसे समाहे। महला तीजा, मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार। आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार। पौड़ी, मनमुख अंदर ना भालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते, बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते। तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते, सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, किसे अगे नानका खले की कै अरदास। महला पहला, जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई, किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए। पौड़ी, सबे थोक वसार इको मित कर, मन पन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर, सच नाम आधार सोग ना मोहे जर। नानक नाम निदान मन मह सांझ धार, सलोक महला पंजवां, माया मनो ना विसरै।

सुदमार निवाड़ा गुर पौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दियां नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखने महला पंजवा जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्रीत हिं जा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा।

मन नु कह हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दसे हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्पे हो हौ मैं तज हो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथियां तख्त प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी।

तरोड़, जान गंधर्वा नगरी सुख कटाऊ डूए, इस पंधाणु घर कणी पौड़ी, अकल कला नह पाई है, प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह, नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा, से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा, तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर, अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई, बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै, जिस तुर मस्तक लेखं इन जन्म सवारिया अपना, जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा, सो निवाहू गड जो चलाऊ नाथी है, कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा, हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा, प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा, मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव, नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी, बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी, इक सहार जियो बाहरी सब फिरे निकामी, मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी, फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी, चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी, विचरदे फिर है संसार मह हर जी हो कामी, कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी, जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी, दखणे महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोए, नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो, महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो, तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया, महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा, मूह तन प्रेम अथाह पसन को सच्चा धनी पौड़ी, निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा, आवै जाए पवाई है बहु जोनी नचा, बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा, अंदरो हो थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा, वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा, मारिया सच्चै पातशाह वेख तुर कर मचा, जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा, हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा, दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण ते आए जन्म मरण मले उतरे, सच्चे के गुण गाए महला पंजवा, देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया, नानक सफल जन्म जय कट बुठा सच तनी, महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी, नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो मापिरी पौड़ी, जिन जन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई, ओह आप तरिया कटंब स्यो सब जगत तराई, ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई, ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई, ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई, ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई, होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई, पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई, दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है, कूड़ै कूड़ी सोए नानक विरले जानी है, जिन सच पल्लै होए महला पंजवा, सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सा, सुतड़ी सो सहो डिठ तै सुपने हों खन्नी है, महला पंजवा सज्जन सच परख
मुख अलावन थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पौड़ी तरते आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी ताजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखने महला पंजवा दिथी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस नरासा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरियोद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्स समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वर हो सेवक थिर होसी सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखने महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारे दड़ो पी तार नानक पिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाऊ सुनंदो मां पेरे मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो।

ते पाया राम ते भवहै न बारे बार रहाउ। झूठा जग डहकै घना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेहे जन पिया तेहे बहुर न भई प्यास। गुर प्रसाद जेहे बूझिया आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुद्रै पार। उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावहंगी। सुन है सुन मिलिया समंदर सी पवन रूप होए जावहंगे। बहुर हम काहे आवहंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्मै बुझ समावहंगे। रहाउ जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चुकावहंगे। दर्शन छोड़ भये समंदर सी एको नाम त्यावहंगे। जित हम लाए तित ही लागे कैसे कर्म कमावहंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समावहंगे। जीवत मरहो मरहो पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई। जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो। एक अनेक होए रहे हो सगल में है अब कैसे परमा

तारन करन तबै लग कही है, जब लग तत ना जानिया, अब तो बिमल भय घट ही मह, कह कबीर मन मानिया, जिनगढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावन, काहे की जत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकरे, तह हर को नाम छडावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना, एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुकते, जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो, बसह पंच किरसाना, नैनू नकटू सर्वनू रसपत, इंद्री कहया ना माना, बाबा अब ना बसो ए गांव, करी करी का लेखा मांगे, कायत के तू नाव रहाओ, तर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी पहारी, पंच किरसानवा भाग गए, लह बांधो जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे कहो।

प्रसाद अनपहु किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपहु होए वणा हम्बे सहो हदूर देखे ता पहु पवे बैरागी अड़े हुक्मै बूझे ता निरपो होए वणा हम्बे हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब लोक वणा हम्बे तृष्णा पास ना छोड़ी बैरागी अड़े ममता जालिया पिन बना हम्बे चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हम्बे सतगुर बिन बैराग ना होवी बैरागी अड़े।

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किस ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लै कै जाएगा। कहत कबीर सुनहोरे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा। माते शतर धरे रहाओ, जाति छोत जगत को लागे। तां पर तुही धरे नीचे है ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदन।

सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल तां कै हर हर हरना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण वेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाध अपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैण अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग

संतापी नानक तीजै त्रे बिदलोका माया मोहे व्यापी चौथा पैर भया दौत बिहागै राम तिन घर राखियड़ा जो अन दिन जागै राम गुरपूछ जागे नाम।

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजै बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

राम अन दिन पूर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक पूर पया मन मानिया।

ते मन मानिया जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया सो प्रभ गुरमुख जानिया करन कारण समरथ अपारा त्रे विद मेट समाई नानक अवगुण गुण।

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा तारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देव है चढ़ सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे तिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता सच राता

प्यारी सच कर खोज लहे साचा गुर थानो मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना अमर अजो

साचै राचा गुरमुख तरिय तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाणी किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिया जम डर मरिया जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधे।

राम गुण गाए राम रसाए रसिय है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्स ना होए क्यों अमृत पीवी राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाई, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिए राम, हम मूड़ मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग है सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास वसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा, जो तुम प्यावे जगदीश, ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर धरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेहो अगम, गुर सतगुर बचन लहया, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोल है, जा खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिन से, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच भाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चलावह प्यारे हो तिवें चलना, हमरे हाथ किछ नाही, जा तू मेलह ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनि ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चला वह प्यारे हो तिवें चलना, तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश, सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख मात, जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अराध्या, तिनके पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापिया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश, सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर, सब ऊपर साच धनी, जिन जपिया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त घणी, जिन जपिया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिए रखण हार, हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बणी, तू जल थल मही अल भरपूर, सब ऊपर साच तणी, तू थान थरंतर हर एक, हर एको एक रविया,
वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान तनंतर हर एको एक रवया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है जिसकै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिस कह जिस अंतर भौ भावनी होई बिन भय किने ना प्रेम पाया बिन भय पार ना उतरिया कोई भौ भावो प्रीत नानक किसह लागै जिस तू अपनी कृपा करह तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसी हर पाया प्रभ अविनासी हर आप करतै पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बणी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बणी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेलाया तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछै लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछै जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोलै गुर कै नाए लय सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करह क्या किस पास मांग है सब भाग सतगुर पिछे पई जगातिया अपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुरु उठ गई गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाऊ थे हो गुआया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुर बचन नानक हर भगत लही मिले आए।

प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई।

प्राण हित चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का।

अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ये दूर करो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

आई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत बानी केदारा महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करो खट कर्म जुगत ध्यान धरो अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल सरन बंदन करना पते भाव हरन हर हर हर हरे।

रहाउ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार। रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपजतो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर।

तेहे कत जीवन होत रहाव। खात पीत अनेक बिंजन जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे से बहु

पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरध बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उरहारी।

या निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आपे है रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटे दसवां दर खूले ता मन खीवा पाई

टेटे टेडे हस्त चर्म बिष्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ। राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे परानी जां तिस भावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह आया।

भाऊ भगत स्यों काज न कछु है, मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान। कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान। कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाव। गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए। मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए। कहत कबीर राम की ना सिमरहो, जन्म अकारथ जाए। राग के दारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही। चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन में है काम क्रोध हौ ममता, कठन पीरियत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पये बहरे, मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ, जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा।

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिट है गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरो महला पहला हिरदय नाम सर्ब धन धारण गुर प्रसादी पाई अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चित लाई है गुरमुख राम नाम जप हिरदय सहज सेती घर जाइए रहा परम भेद पौ कबहु ना छूटस आवत जात ना जानी बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मुए बिन पानी धंधा करत सगली पत खोवस परम ना मिट सगवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कब ही अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन।

ए जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निहफल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन त्रिपत ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया।

गर्भ ना करियो कोई। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाऊ। चारी वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बहु विद भांडे घड़ै कुमारा, पंच तत् मिन देही का अकारा, घट वध को करै बीचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरों महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख धारी, ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए, जागत रहे ना मूसै कोई रहाउ। सो जागे जिस सतगुर मिले, पंच दूत ओह वसगत करे, सो जागे जो तत बीचारे, आप मरे अवरा नह मारे, सो जागे जो एको जाने, परकिरत छोड़े तत।

कोई खोजो हो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई, रहाव मूल मोह कर करतै जगत अपाया, ममता लाए भरम भुलाया, इस मन ते सब पिंड पराणा, मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा, कर्म होवै गुर कृपा करै, एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै, मन का सुभाओ सदा बैरागी, सब मह वसै अतीत अनरागी।

आप उदरे सब कुल उधारन हार बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे औखे होवै चोटा खाहे आपे करता देवै सोए नानक नाम प्राप्त होए भैरो महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द बीचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए निज कर वसै सहज सुभाई

राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाउ। राम नाम जन पाल है सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए। हर का पाणा मन है से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान। सो सेव हो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। भैरो महला तीजा, कल युग मह बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग मह राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ। तन मन खोज करे मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया तेहो लोए। कल युग मह हर जियो एक, होर रुत ना काई। नानक गुरमुख हिरदै, राम नाम लेहो जमाई। भैरो महला तीजा कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

मान आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाव ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा दुख विच जमे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माही समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाव गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे ता फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरो महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाई खुआई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाऊ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाई।

नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सोरलिया माण। जो किश कह सो भला कर मान, नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा, मनसा मन है समाए लै। गुर शब्दी विचार, गुर पूरे ते सोजी पवे। फिर मरे ना वारो वार, मन मेरे राम नाम आधार। गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पजामन हार रहाउ। सब मह इको रव रहिया, गुर बिन बूझ ना पाई। गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ, अन दिन हर गुण गाई। सुख दाता हर एक है, होर थै सुख ना पाए। सतगुर जिनी ना सेविया दाता, से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख ना लागे ताई। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाई। भैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई, मर मर जम्मै सदा दुख पाई। डर की खबर ना पाई, मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ। पेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौंकत फिरे दर बार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है, किनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राखिया उरतार। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा, हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय, मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सिउ कदे न लागे प्यार। रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै,

अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचराएन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो।

पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जाय ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहा सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभु तू वर्तनता कर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरू महला पंजवा वर्तना रहो ना महरम दाना तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लोह मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाओ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना भैरू महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ो शिकार मृग पकड़े बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कह गाए मृग पकड़े कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम भैरू महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत नाया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया नह पीजे अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया भैरू महला पंजवा जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन्ह अपाए तिस को पीर गुर गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत धन नह पारना

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै पीवत बहुड़ ना जोन परमाम।

नानक दास एहो किया बीचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरो महला पंजवा, लेप न लागो तिनका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ।

शोभा पावे प्रभु के द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरों महला पंजवां, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा के नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाऊ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो मोहल्ला पंजवा, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवां बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोई। पहरों महला पंजवां, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा प्रकूर समाही, तव कड़िया जे किस हुए तिंगाने, तव कड़िया जे पूल रिन्याने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यो पावे त्यो करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहे आसमाए, राखो पैज नानक सरनाए, पहरू महला पंजवां, बिन बाजे

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहाँ को बकता।

कहां कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हों त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

अंते अपूछे, राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने, भैरू महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला, भैरू महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाऊ, सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई, सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान, सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै, नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, भैरू महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाउ, नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना, नाम लैत

मोहे दुहागने आप शिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुख हर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हार, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाई, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगा जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी मैं माया पे जाप जी।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाव नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा सार, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे।

मन तन नानक हर गुण गाओ साधु संग जिस देवै नाओ भैरू महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

तुम थान बैठावो, दास अपने को भगति लावो, नमाने को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसे, जाने अपने कह हर मन बसे, पार ब्रह्म प्रभ।

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हों मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ता

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई भैरू महला पंजवां सुख नाही बहुते धन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वड भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हों करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिन जन जपना।

वसह मन आई सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत हुए रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शन हार भगत पाए सदा निस्तार साचा धन साची वडियाई गुरपूरे ते निहचल मत पाई कर किरपा जिस राखनहारा ताका सगल मिटै अंधियारा पार ब्रह्म स्योला।

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाउ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महा परेत, आठ पहर हर हर जा

पूर्ण मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेका, सो कलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राख हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन।

कोटी त्रिहो गुण की दास के हुए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

नहीं पंग पैरों महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाही हर का दास किस बुरा ना मांगे।

नाम निदान निर्मल एह थोक कर कृपा लीजे लड़ लाए चरण कमल नानक नित त्याय पैरू महला पंजवां सतगुरे अपने सुनी अरदास कार जे आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु त्याया गुरपुरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाउ जाका किया सब किछ होए तिसका

पड़ताल करती जा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ। अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिटह जस सुनी। नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी। पैरो अष्टपदिया महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटे हो मारा। नानक हो मैं रोग बुरे जह देखा तह का बेदन आपे बख्शे शब्द तुरे रहाओ। आपे परखे परखन हारे बहुर सुलाक ना हुई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई। पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरुद्रा रोगी सगल संसारा। हर पद चीन पए से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका बेद कतेव करह कह बपरी नह बूझह एक एका मिठरा सखाए सो रोग परीजै कंद मूल सुख नाही नाम अवसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही। तीरथ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुविधा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया। गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया। पैरों महला तीजा कर दूजा।

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई। संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार। भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई। किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पलाया। पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़े आया। प्रहलाद कोठे

जो तुर लिखिया सो आए पौता जन स्यो वाद रचाया। पिता प्रहलाद स्यो गुरज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई जग जीवन दाता।

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करे ना साके जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वढे आई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती नाराई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावे सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद तंदे लाया, पूंदी कार कमाई। जन्म पदार्थ जुए हारिया, शब्द सुरत ना पाई। मनमुख मरह तिन किशु ना सूझे, दुर्मत अज्ञान अंधारा। पवजल पार ना पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा। साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मलाई। गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे निवलाई। तू आप निर्मल, तेरे जन है निर्मल। गुर कै शब्द विचारे, नानक तिन कै सद बलिहारे। राम नाम उर धारे, भैरों महला पंजवां। अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तिस सलाही जिस हर तन रास, सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय तिन नौ निध पाई, नाम बिना भ्रम आवे जाई। जिस नाम हृदय सो वे परवाहा, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा। जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मनमुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साह, नाम हीन नाही पत वे साह। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बिधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा। जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल। आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत् मलाया। भैरू महला पंजवां, कोट बिशन कीने अवतार। कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए। कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गो

सिह जाए कोट अपार जना तेरे अंग कोट भगत बस्त हर संग कोट छत्रपत करत नमस्कार कोट इंद्र ठाडे है द्वार कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही कोट नाम जाकी कीमत नाही कोट पूरियत है जा कै नाद कोट अखारे चलत बिस्माद कोट सकत सिव आज्ञाकार कोट जी देवे आधार कोट तीर्थ जाके चरण मझार कोट पवित्र जपत नाम चार कोट पुजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट महिमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया घट अंतर जामी।

नानक को प्रभ मिलियो अचिंता, कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर पिस संग मन राची, रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार, अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा, अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत, अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ काट काट दीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा, अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरि हाथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक, चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई, भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर किस गुण बिचार चले जुआरी दोए हाथ चार।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कत है ना जाई, रहाऊ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो,

जाना, ज्यों हो बौरा तौ राम तूरा, लोग मर्म कह जाने मोरा रहाऊ, तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम

पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे लाख जतन करे ओहो चेतना तरे रहाउ। जो निरतन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दोनों

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

ना किस दे फूकट कर्म निःफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिष्टा माहि रुलाई ता मृतक का क्या घट जाई कहत कबीर हौ कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे माया

जाति साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

पार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिबलाए, सतर सै सलार है जाकी, सवा लाख पै कंबर ताके, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दू

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्ध

रहै, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिरै, इंद्र कोट जाके सेवा करै, छप्पन कोट जाके

निकट बसै नर हरि, जो ना पुजंते नारायणा, तिनका मैं ना करूं दर्शना। रहाउ जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पास तैसे हुए नरा। प्रणवत नाम देव ना कह बिना, ना सो है 32 लखना।

मेरो मन पतियाए, नाही ता घर को बाप रसाए। रहाउ सोइन कटोरी अमृत भरी, लैना मैं हरिया गै तरी। एक भगत मेरे हृदय बसै, नामे देख नारायण हसै। दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ता को करो शिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ

खीर खान की हो ना पावे, कबहू घर घर टूक मगावे, कबहू पूर्ण चने बिनावे, ज्यों राम राखे त्यों रही है रे भाई।

संडा मर का जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कहे करताल बुझावे, चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे। रहाउ बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो और ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कूपियो, मोहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन तनी, थंब माहे हर पाख है। हर नाखश जिन नखह बिदारे हो, सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्यावे, राम अपै पद दा।

आए ना तर गर्दन मारो ठाए बादशाह ऐसे क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवै कोई मेरा किया कछु ना होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ियो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

पाल गंग जमन जोल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रे पवन तनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अकोडी करूं कह ता लेकर ऊपर धरूं।

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फुरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस पति।

कोई, पारस परसै दुबदा ना हुई रहाउ। सो मुन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक सुमाई। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अन पै रह। फल कारण फूली बन राई, फल लागा तब फूल बुलाई। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण दद मतै सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग। नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली भेसवा रहाउ। जिन आकाश कुलह सिर कीनी, कौसै सपत पयाला। चमर कोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला। छप्पन कोट का पे

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महा ममारखी चढ़िया सदा बसंत परफड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोबिंद भोलिया हौ मैं सुरत वसार हौ मैं मार विचार मन गुण विच गुण लै सार रहाउ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का

नानक हरे ना सूकही जे गुरमुख रहे समाय। महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए। रंग राते रंग है से तेरे चाहे किस पूज चढ़ावो लगो पाए। तेरे दासन दासा कहो राय जग जीवन जुगत ना मिले काए। रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देव धूप। तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दास।

करनी ऊपर होवग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा धार।

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाऊ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनके रमैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

बिन साधना पाईऐ हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जा को तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दुख

लखन जानी है हिमा धन संग्रह कहया सुन है न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै हरे मन चेत हरी बिन गुर मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ। कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पावे त्यों राखे सोई।

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर किरपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक और हर अमृत धारी बसंत।

पाए, तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचै प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

ना होई, बहु अभमान अपनी पत खोई। सेवन भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया। घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा। नाम नव निद पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए। आप करे किस करण ना जाए।

अल्लाह तीजा गुर शब्दी हर चेत सुपहाय राम नाम रस रह अघाय कोट कुटंतर के पाप जल जाय जीवत मरह हर नाम समाहे हर की दात हर जियो जाने गुर कै शब्द इहो मन मौलिया हर गुण दाता नाम बखाने रहाउ भगवै वेश भ्रम मुक्त ना होए बहु संयम शांत ना पावे कोई गुरमत नाम प्राप्त होए वड भागी हर पावे सोए कल

करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्ब थाए गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाओ घट घट अंतर एको हर सोए गुर मिलिया एक प्रगट होए एको एक रहिया भरपूर साक्त नर लोभी जान है दूर एको एक वरतै हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिनस दोए सदे पए मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए हर हर केत सदा मन मेरे सब आलस दुख पांज प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ मनमुख फिर फिर हो मैं मुए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सतगुर मिले ता खोजिया मिल ज्योति ज्योत समानी माधो साधु जन देहो मलाई देखत दर्श पाप सब नासह पवित्र परम पद पाए रहाउ पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तब पकरे तन साबत रास उबरिया पाखंड भरम अपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाए।

है। नानक शांत हुआ मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई। हम कीरे किरम तुम से, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा। गुर सत गुर चरण हम बनसे, गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृप से। जन्म जन्म के किल विक मल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हंसे रहाउ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जपियो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सोभा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अख पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते। ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीते। जन्म जन्म के हों मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे। हर भावे सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे। तिल घर नहीं वासा पाईए, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो। घर मंदर आन वसाईए, गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईए। हों मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईए रहाउ। कर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईए। ज्यों ओडा कूप गोहज खिन काढे, त्यों सतगुर वस्त लहाईए। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईए। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईए। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईए। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान पया दुख बिखिया।

नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ। नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जां को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जां की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जां के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

कैसे उदाहरण गुरह पीर तुम दाते प्रभ देन हार निमक निमक तिस नमस्कार रहाउ जिसह परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पए मुकत भगत आराध्य।

प्रसाद मन अगानार रसह स्वाद सेवक लागो चरण सेव आदि पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान बसंत महला पंजवां तुम बड दाते दे रहे जी प्राण मह रव रहे दीने सगले भोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राणी।

सत ज्ञान सर्व ध्यान मह एक ध्यान हर कीर्तन मह उत्तम धुना नानक गुर मिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आराधे

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंत काल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद

सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछ नाही फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाव। संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस। हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान। हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार। चरण कमल स्यों लगो।

जन प्रभ आप रखी दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताय किरत ओना का मिटस नाही वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतने आप।

पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिनसे गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाउ सब फल पाए निश्चल गुण गाओ नानक भगतां।

तब फूल तारहे। अब कलु आयो रे एक नाम बोवहो अनरूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाए हर नामे के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो हो सफा विछाए इन बिद पासा ढालो बीर गुरमुख नाम जपो हो दिन राती अंत काल नह लागे पीर रहाओ कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेल आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेल सो जिन बाजी घर आया।

संग तेरे हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण तां के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

मन नानक मानिया सच सलाही, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर हुई, एकत राचे पर हर दुई, दूर दर्द मत अमृत खाई, गुरमुख बूझै एक समाई, तेरे दर्शन को केती बिल लाई,

दुख घणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाता।

गया तीता, हरख सोग ते रह नरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछान रह लिवलागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा, गुर दिया सच अमृत पीवो, सहज मरो जीवत ही जीवो, अपनो कर राखो गुर भावे, तुमरो होए सो तुझ समावे, भोगी को दुख रोग व्यापे, घट घट रव रहे।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना पागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस

आपे बशरू गऊ खीर, आपे मंदर थम शरीर, आपे करनी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार, तू कर देख करनहार, जोत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करन जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद, बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार कर, महलत चार बहाली, चारे दीवे चहो हथ दिए, एकाएका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिखदारी।

हर पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतिया कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला।

चारी कुंट सलाम करहेंगी, घर घर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड्याई, मेका घड़ी संभाली, बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वस्या, हिन पल फिर न रहाई, अनक अपाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन, सतगुर मिले ता पूरा पाईए, भज राम नाम निशान, रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वस्या, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हो आरसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल भये हैं, ज्यो कृष्ण बिदर घर आया, मिले उस दामा पावनी तार, सब किसे आगे दालद पंज।

रहम खीली एक रत्ती तिल ना कटाई जानकी उस्त है राम नामा दह दिस सुभा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तिल अपने

के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन दासा आपके जल अपरंपर करता आप ही मेल मलावे नानक गुरमुख सहज मलाई ज्यों जल जल है समावे बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मन उदरिया।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदार्यो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदार्यो दास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय।

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तव नह संगाई विख का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार राम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन

कारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए रहाओ। सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर। नायक एक बन जारे पांच, बरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हैरानी बनज टूट, डह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे भी जूठे, जूठे मरह अभागे।

तेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग, कस चंदन चोआ बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

हौ तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर तो मन चाली लाड।

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भवती

पाछी किसह पकार है पियो पियो। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। कहरव दास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल। इस कर्म है

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाऊ। जो जन दीन भये गुरे आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरे आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलहा मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। किस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई।

लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाव, दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी।

आत्मान नरहरे नरहर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाउ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर अराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवाधु नित नित जागरण करहो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल तू आ पाऊं, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई, जगदीश्वर कृपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अनदिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाउ। हर दर्शन को कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाऊ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सार महला पंजवां, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान।

करहे सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुरु बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

पाई सारंग महला पंजवा ओए सुख का स्यों बरन सनावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमूलक ज्यों चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जां को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही ना जाए कहावत आन उपाव जेते किस कहिए तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्लो तुल्यो ना जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै हम बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यों हारै रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार है गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पारे निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभिमाने नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो प्राप्त जा कह लेख मथामा सार महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लहिए रहाऊ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जा कै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारै सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिजायो रहाओ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाउ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होमो तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शन खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह

यह अधावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आनना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुखदाता हर प्राण साई सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांछे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलक सुख साध समागम।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवां।

अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहा देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परयो तव गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल भये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहा काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर भये एका जह ते उठ्यो तह ही आयो सब ही एक है एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राण पति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एक ही प्रिय मांगे पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यो दृष्ट ना करे रुचांगे हर रस चाहे प्रिय प्रिय मुख तेरे जो अल कमला लो भांगे गुण निदान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाऊ हर सेव हर हृदय बसाऊ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवण हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेह घर में बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाऊ। बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपता। बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पए लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा। सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यों जल मीना। रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है। सुटह संघार निमुख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है। रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमुख निमुख समार है। हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है। सारग महला।

दुख सहमा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाऊ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रत पालक मोहे कलकर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहंग रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थ होहं सारंग महला पंजवा नैन हूँ देखियो चलत तमाशा सब हूँ दूर सब हूँ ते नेर अगम अगम घट

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्वथान घट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा सत संगत कीरेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग नालह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियर बसेओ।

और दुतिया आस बराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख पाए।

फूल फूल बेख खाई रहा प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते तिस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाए कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले थिर नानक राजया सार महला पंजवा प्रभ मेरो केते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईए आस न अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याईए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरनी पाईए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाईए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाईए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताईए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जीओ मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे।

तेरा काट सिल्क जाओ अपना कीनू नानक सुख कनेरा सारी महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बनासी पयो कृपाल जी सुख दाता होई सगल खलासी रहाओ अवर न को सूजे प्रभ बिन कहो को किस पह जासी ज्यो जान हो त्यो राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन आनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ सुमारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यो जान है त्यो पारे रहाल जब भूखो तब भोजन मांगे अगाए सुख सघारे तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थापियो थापन हारे नाम ना बिसरे तब जीवन पाई है।

सहज सहज गुण गायो रहाव, गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहु तायो, रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वचन ग्रह पायो, नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज समायो, करना आप करावन आपे, कहो नानक आप आपायो, सार महला पंजवा, अमृत नाम मन है आधारू, जिन दिया तिस कह कुर्बान, गुरपूरे नमस्कारु रहाउ, बूझी तृष्णा सहज सुहेला, काम क्रोध बिख जारू, आए ना जाए बसै एह ठाहर, जह आसन निरंकारु, एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंडू कारु, आदमा बेअंत प्रभ सोई, कहो नानक साच बीचारू, सार महला पंजवा, बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्ब सुख ताहु कै पूरन, जा कै सुख है हरी रहाव, मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद कना, बड समरथ सदा सद संगे, गुण रसना कमन पना, थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारी, कहो नानक ते पवन पवित्रा, जा मह संत तुम्हारी, सारंग महला पंजवा, रसना जपती तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू ही।

का किन्ही बाप महतारी सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रोहो मोह दूर कर बपरे संग गोपाल लह जान रहाव मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता भरता उर्ज्यो आन जंजारी रहाओ देव सचार के दी सह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी कर्ण करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाव खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्र बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला पंजो।

आओ ऊही ते हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास देत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर भरै बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

एक की आपकी ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा।

अंतर जामी जान, जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइय वडभागी, नानक संतन कै कुर्बान, सारू महला पंजो।

तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रम ते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता सारंग महला पंजवां ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्व सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारू नायो रहाओ कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्ट।

अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उच्चर हो प्रभु को नाव रहाओ। राम नाम रतन धन संचो, मन तन लाभ हो पाओ। आन बेभूत मिथ्या कर मन हो, साचा एह सो आओ। जी प्राण मुक्त को दाता, एक सस्यो लिव लाओ। कहो नानक ता की सरनाई, देत सगल अपे आओ। सारी महला पंजवा, होती नहीं कमन कछ करनी। यह ओट पाई मिल संत है, गोपाल एक की सरनी रहाओ। पंच दोख छिदर या तन में है, बिखे ब्याद की करनी। आस अपार दिनस गण राखी, ग्रस्त जात बल जरनी। अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर, सर्व दुख पै हरनी। मन बाछत चितवत नानक दास, पेख जीवा प्रभ चरनी। सारंग महला पंजवा, फीके हर के नाम बिन साद। अमृत रस कीर्तन हर गाइए, अहनस पूर्ण नाद रहाओ। सिमरत शांत महा सुख पाइए, मिट जाहे सग

रहाऊ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पहानी। सारी महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट हुए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारे। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत परे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारे। सारंग महला पंजवा, प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मूल ते मनुख करिया, एहो परता।

सर्व प्रतपालक सर्व कटां आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवां, आवे राम सरन बड भागी, एक सबिन किस होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराध हर हर, साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है, जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाउ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जह ते उपजेओ तही समानो, साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद विसार सगले, भलो नाम सुआउ रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय, एक स्यों लिवलाओ। साध संगत होहे निर्मल, बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, माया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन, पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचारियो, भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन, अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नष्ट है। चरण कमल बलिहारा रहाउ, सत परमेश्वर सत साध जन, निचल हर का नाऊ। भगत भावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाईए, सगल घटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो ता को, जां का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई। निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम निवलाई। संत संग बने आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई। जां को कृपा करहु प्रभ मेरे, सो हर का जस गावे। आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन तो गनी है हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन। फोर परम की रेखा रहाउ, कहत सुनत किश शांत ना उपजत। बिन बसास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत। तां कै मुख लागे का लेखा, जां कै रास सर्व सुख स्वामी। आन न मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को एक नाम, कलमल दगद होहे।

जगदीश भजन सुख ध्यान तेरे सरन पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तुरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ बलबंच करै ना जानै लाभ है सो तुरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरझा।

जंजाल रहाउ। बिन प्रभ सेव करते अन सेवा, बिरथा काटे काल। जब जम आए संघारे प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल। राख ले हो दास अपने को, सदा सदा कृपाल। सुख निदान नानक प्रभ मेरा, साध संग धन माल। सारंग महला पंजवां, मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीते, पोहत नह संसार रहाव। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी तार। नाम निदान उच्चरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारन महला पंजवा, हर के नाम हीन मत थोरी। सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर, मिलत अंध दुख घोरी रहाउ। हर के नाम स्यों प्रीत न लागी, अनक भेख बहु जोरी। टूटत बार न लागे तां को, ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै, मन खचत प्रेम रस खोरी। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ बिन्यान न होरी। सारंग महला पंजवां, चितवो वा अवसर मन माहे। हुए अकत्तर मिलहो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाव। बिन हर भजन जेते काम करियह, तेते बिरथे जाहे। पूर्ण परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संयम कर्म सुख साधन, तुलना कछुए लाहे। चरण कमल ना

तेरी सरनाई जो भावै तिवै चलाई। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाव। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार, अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार, कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप, आद बियाद अपाद सब नास्ती।

काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत ना होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवां मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति हित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकते आवे जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याय परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी

चरण कमल शरण आए नानक साध सदा बलिहार सारंग महला पंजवा रे पापी तैं कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत खीन गर्भ उदर बिललाट करता तहा होत दीन महामाद विकार बहंदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा माई रे चरण है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात ना कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहयो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवा माई री मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रप्यो खमारू रहाओ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर न होत कारू चरण कमल स्यो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारू कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारू नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारू सारी महला पंजवा माई री आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहे रहाओ नाम बसार चलह अन मार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत ना आवै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाहे गुर प्रसाद नानक जग दीत्यो बहुर ना आवह जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीतिया बहुर ना जुवै हार आठ पहर तब के गुण गावै पूर्ण शब्द बीचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावह गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कै हृदय वसै पै पंजन किस जान सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगे दान सारी महला पंजवा वूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत तेज अन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

पर वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवां, निभहि नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए नित धन, बिखै माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ।

मन मोहिउ अचरजता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोविंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद।

प्रिया रंग रंग रफी नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साथ तुम्हें संग।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुरु बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाई का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यो सुपना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

सगल बला सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवां कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू न हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश।

पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

आई। जय जगदीश तेरा जस जाच्यो, मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ। हर की प्यास प्यासी कामन, देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना, प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन, गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो, हर सियो रहा समाई। ऐसी रबत रवो मन मेरे, हर चरणी चित लाई। विषम भये गुण गाए मनोहर, निरपौ सहज समाई। हृदय नाम सदा तुन निश्चल, घटै न कीमत पाई। बिन नावै सब कोई निरतन, सतगुर बूझ बुझाई। प्रीतम प्राण भये सुन सजनी, दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी, रंगुल पही मन पहाई। सहज समाध सदा निवहर सियो, जीवा हर गुण गाई। गुर कै शब्द रत्ता बैरागी,

हर रस रत्ते अद कहाई, एक सबिन मैं अवर ना जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुपार भरे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथ

द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच आधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए है जिनकी पत पावै लिखै सारंग महला पंजवां अष्टपदियां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत तां को सगल घटा जस गायो उपमा सुनहो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा बेशुमार वद साहा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे नीर तरन कर राखी एकत कोए ना किसे ही संगे कट कट कथा राजन की चाले कर कर तुझह उमाहा जी जंत सब पाछै करया प्रथमे रिजक समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारंग महला पंजवां अष्टपदी घर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवै प्रगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार शोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण
अपना किया जन है आप, आपे घट घट रहे हो बे आप, कृपा निदान नानक दयाल, जिन जपया नानक ते पहे निहाल। सारंग संत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब देखिए अनपह का दाता, कट कट पूर्ण है अलपाता, कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन, जल तरंग स्यो रचन किया, अब रस माने भोग कटाने, आनना बिया कोथिया, हर रंगी इक रंगी ठाकुर, संत संग प्रभ जाता, नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना, सब देखिए अनपह का दाता, कौन उपमा देऊं कमल बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किश दिसे, सांगना कछु हूं जाई, कहो नानक हर हर अराध हो।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको।

नानक आख सुनाई करनी ऊपर हुए तपावस जे को कह कहाए पौड़ी गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगति आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइया वस्त सुमाल वस्त लई बन जारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले एक चले मूल गवाए थोड़ा किन ना मंगियो किस कही ऐसा बास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केत्या के बाप केत्या के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जमदर बद्दे मारी है परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाइये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सिउ जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाही है करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाही है जिन कीता आकार दाता सो सलाही है जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत सिओ कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सत गुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिव लाई सलोक महला दूजा किस सिओ कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जा की ना फिरे साहिब सो परवान चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार जो तिस भावे नानका साई भली कार जिन्ना चीरी चलना हाथ

आख, एक आख आख है, शब्द पाख है, अर्ध उर्ध दिन रात, जे कहो होए ता केहो दिसे, जापै रूप ना जात, सब कारण करता करे, काटे ओ काट काट थाप, आखने ओ खा नानका, आख ना जापै आख पौड़ी, नाए सुने मन रहसी है, ना मेशां ते आई, नाए सुने मन तृप्ति है, सब दुख गवाई, नाए सुने ना उपजे, नामे वडे आई, नामे ही सब जात पत, नामे गत पाई, गुरमुख नाम ते आई है, नानक लिवलाई। सलोक महला पहला, झूठ ना रागी, झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी, झूठ ना अन्नी, झूठ ना नाई, झूठ ना मिंबर है सब थाई।

मुख की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपई मुख पीता तिख जाई पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख हुए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगै आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जां जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगिए होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

हुक्म चलाए आपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाई सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देव सोई श्लोक महला पहला पुरिया खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

सब कारण करता करी देखै वारु वार जे चुपै जे मंगे दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानी जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चर नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटी है फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाही है पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्नी है जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलियै पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज होआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म विचार जिन

मोहल्ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे दें दे सुख पाया जो हर नाम त्याएं दे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम सुमाया। श्लोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड़ भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी।

पाई घर मंदिर गच गीरिया किस साथ ना जाई सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके जे संतर भव थके भेख तारी दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन दुख लागा अत पारी मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै व्योहारी अंदर कपट उदर भरन कै ताई पाठ पढ़े गावारी सतगुर सेवे सो सुख पाई जिन्ह मैं विचों मारी नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है बूझै को बीचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धरमाई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुत्ती शब्द समाए, आपे प्रब मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसर झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवै दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूणिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हऊ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध न आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं, मर जम्मे वारु वार।

आहार मोह ठगौली पाईन बहु दूजै भाए विकार। एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करहै सब नमस्कार। नानक अनदिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम। तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम। नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई। पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई। जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई। पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई। नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार। गुर की करनी भौ कटियै नानक पावै पार। महला तीजा सच पराणा ना थीयै नाम ना मैला होए। गुर कै भाणै जे चलै बहुड़ ना आवण होए। नानक नाम वसारिया आवण जाना दोए। पौड़ी मंगत जन जाचै दान हर देहु सुभाए। हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए। खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखालिया रव रहिया सब थाए। सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वर्त आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए ले नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ऊना परख ना आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई ता पारखियां थाव लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वत लहै नौ नित पल्ले पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुखदाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिन की बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुर द्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे। पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोहि माया। देश परदेश धन चराए आण मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किश चल से मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार, गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लय आपे बख्शनहार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै न बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह गुट्ठा शहबर लाए, सब धरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए, हर तसै त्यावो संत जन हो जो अंते लय छाए, हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृप्तै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए, पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे मन लय रजाए, गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब सू

अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हस्से वस्तु होए होए सो उज्जर।

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठग मूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेह बा स्वादी लीलत लोह।

गाड़े तरै हाथ संचै समझै नहीं मूड़। धन धरती तन होए गयो धूड़। काम क्रोध तृष्णा अत जरै

रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाऊ मेरी बांदी भगत छिडावे।

निफल पई सब सेवा बाट पार घर मूस बिरानो पेट भरै अपराधी जेहे परलोक जाए अपकीरत सोई अविद्या साधी हिंसा तो मन ते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मेल कथा पनीत ना चाली छाड़ मन हर बेमुखन को

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखय पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

आदि हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किस तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतनक लागै ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कभी।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाव नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तौ धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम अधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

पीतर अमृत सोई जन पावै, जिस गुर का शब्द रत्न आचार। रहाव दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनु नदर करे करतार। काया महल मंदिर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाई, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला घर दूजा।

पहरै सोई, मलार महला पहला, दुख वे छोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत, एक दुख रोग।

ब्रह्म विष्णु में ही सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आविचार।

बुद्ध बदा तैसा इहो संसारा जिसके हुआ तिसह समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हों मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाओ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हौ मैं कर्म कमाए साहिब भावे सो थीऐ पयै किरत फराए सतगुर भेटै मन मर रह हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाय चौथै पद वासा होया सच्चै रह समाय मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है कीमत कहन ना जाय गुर प्रसादी बुझी शब्दे कार कमाय नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिलै शांति उपजै अनदिन नाम लय मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुरख मिले।

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम सुवाही आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै।

नानक कवन बिद करे क्या कोए, सोई मुकत जाको कृपा होए। अन दिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए। मलार महला तीजा, प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई। जम काल मारे नित पत गुआई, सतगुर सेवा जम की कान चुकाई। हर प्रभ मिलिया महल घर पाई, प्राणी गुरमुख नाम त्याए। जन्म पदार्थ दुबदा खोया, कौडी बदले जाए रहाउ। कर कृपा गुरमुख लगे प्यार, अंतर भगत हर हर उरतार। भवजल शब्द लंघावन हार, दर साचै दिसै सचियार। बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया, बिन गुर परम भूले बहु माया। हउमै ममता बहु मोह बधाया, दूजै पाए मनमुख दुख पाया। आपे करता अगम अथाहा, गुर शब्दी जपिया सच लाहा। हाजर हजूर हर वे परवाहा, नानक गुरमुख नाम समाहा। मलार महला तीजा, जीवन मुक्त गुरमति लागे। हर की भगत अन दिन सद जागे।

मन मुख मोहे मुग्ध गुवार अन दिन तंदा करत विहाय मर मर जम्मह मिले सजाय गुरमुख राम नाम लिव लाई कूड़े लालच ना लपटाई जो किछ होवे सहज सुभाय हर रस पीवे रसन रसाई।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्त

जाई सार संभाल माता मुख नीरै तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेलै मात पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खेलै जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरै मन बांचै सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मां

सुरपत कर दोख जठर कौ भरते कृपा निद छोड़ आन को पूज है आत्म घाती हरते हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी तेक न काहू धरते रहाऊ त्याग स्वामी आन को चितवत मूड़ मुग्द खल खरते कागर नाव लंग है कत सागर बिरथा कथत हम तरते सेव ब्रंच असुर सुर जेते काल अगन मह जरते नानक सरन चरण कमलन की तुम ना डार हो प्रभ करते।

हम एक खे न तिस बिन रह न सको, प्रीत हमारी लागी रहा, उनके संग मोहे प्रभ चित आवे, संत प्रसाद मोहे जागी।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास तुम्हारी।

रब रहियो सब अंतर सर्ब रहिया पर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना कारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारे रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारे काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारे दीन दयाल जप

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मधे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाऊ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग ना जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनू कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानू।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करू इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सो जन पाए जां को कर्म लिखिया तुर आई गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रब आप मलाई अपने सेवक को ले प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

करतै आप, सदा सदा मन तिसनु जाप, दृष्ट धार राखे सब जंत, गुण गाव हो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जान है प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाई है मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सो।

सखाई, तिस बिन घड़ी नहीं जग दीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ, सरवर कमल किरण अकासी, दिगसै सहज सुपाई, प्रीतम प्रीत

आई कल हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांदी पिर देश नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रियो प्रियो करै सबै है जेती गुर भावै प्रियो पाई प्रियो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तौ नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार ना लागे बबरे हौ मैं गर्भ खपै जागे ऐसा रहाऊ जय जगदीश प्रभु।

बचनी दिखिया गुरमत जारी मन तन हेम भय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंग अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछू गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चातरक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई।

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन शिंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै भावै दर लहस प्राण। ऊडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा तह मग ना चालन हार। जित घर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै। करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै

संसा जाय सतगुर ते हर बुझिऐ गर्भ जोनी नह पाई गुर प्रसादी जीवत मरै मर जीवै शब्द कमाई।

चार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई, धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई, लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई, सतगुर विण किन्ह ना पाया, मन वेखो हृदय विचार, वडभागी गुर पाया, भव जले उतरे पार, हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार, मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाय, नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाणा पाए, मलार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा, त्रै गुण करे बीचार, बिन नावे जम डांड सह, मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे।

हर हर नाम त्याई रहाऊ, हरे अपने पाने से टिपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवार नहार, वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

कमल प्रगास तित काट नामै नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजै ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिवलाए सद ही नाम वेख हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप वड्डा संसार गुर कृपा ते एहो रोग जाए नानक साचे साच समाए राग मलार शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै गोपाल गुण निध सदा संगे सर्ब गुण जगदीसरै मन मोहे लीना चरण संगे नाम रस जन माते नानक।

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मालदे की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा, गुर मिले मन रहसी है जो उठे परम शिंगार, सब दिसे हरियावली सर भरे सुभर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजीठे लाल, कमल विगसे सच मन गुर कै शब्द निहाल, मनमुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल, थाही पाथे मिर्ग ज्यो सिर दिसे जमकाल, खुदिया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल, इनी अखी नदर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार, तुद भावै संतो।

सब सुख साचो नाम पौड़ी, आपी न आप साज आप पछाणिया, अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया, बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया, किए रात दिनंत चोज वडाणिया, तीर्थ धर्म विचार नावन कुरबाणिया, तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया, सच्चे तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढोले बाह भोला वैद ना जानई करक कलेजे माही महला दूजा वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड़ लहो जित मन्य रोगा कान जित दारू

राम राजा आया, दैंता मारे ताई हुक्म सबाया, ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरो फरमाया, सलोक महला दूजा सामने आया हे सखी, संते चित करे हो नानक चूर मर है दोहागनी, जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सामने आया हे सखी, जल हर बर सनहार नानक सुख समन सोहागनी, जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए, मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया, मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया, आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया, सबना खसम एक है गुरमुख जानिए, हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए, सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए, नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंत कै सो माणे सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करी पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागै वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

अमित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई।

हर चरनी रहे लिवलाय। ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समवाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो गई।

वरसै कृपा तार, नानक गुरमुख नजरी आया, हरि आत्म राम मरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिया, बिन तोले पाया ना जाय, गुर कै शब्द विचारिया, गुण मह रह समाय। अपना आप आप तोलसी, आपे मिले मलाई, तिसकी कीमत ना पवे, कहना किशु ना जाय। हौं बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाय। जगत मुस्से अमृत लुटिया, मनमुख बूझ ना पाई, बिन नावे नाल ना चलसी, जासी जन्म गवाय। गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया, दूतां का किस ना वसाई। सलोक महला तीजा, बबीहा ना बिललाए, ना तरसाए एहो मन, खसम का हुक्म मन। नानक हुक्म मन्या ते खोतरै, चढ़ै चवगल वन महला।

जल पाई विचों आप गवाई। नानक जिस बिन चसा ना जीव दी सो सतगुर दिया मलाई। पौड़ी खंड पताले असंख मैं गणत ना हुई तू करता गोविंद।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार श्लोक महला पंजवां रात ना विहावी।

कह सहज सुपाय मेघ वर्ष दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई सुख वस्या मन आई नानक सो सलाही है जे देंदा सबना जिया।

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ गुरमुख शब्द संभाली है सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

है शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाय नानक हुक्म ना जापई किथे जाय समाही फसल आहारी।

तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगमय गोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेवया तिन्नी सुख पाया।

अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल घटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रू वह लिया वह फेर बिन बूझे

जिन चेतना आवे महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

जिस भाणा मन वसाई अपने भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिखिया कदे ही रजे नाही मूरख भुख न जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाई जिसनो कृपा करे रजाई सलोक महला पहला शर्म धर्म दोए नानका जे धन पल्ले पाई सो तन मित्र ना कांडी जित सिर चोटा खाई जिनके पल्ले धन वसै।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया सो पंडित भी।

बिन भरम ना कटिया नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे पाइए मोख द्वार पै ते सहज पाइए मिल ज्योति ज्योत अपार पै ते पैजल लंघिए गुरमति विचार पै ते निरपो पाइए

वार हुए फक्कड़ पिटे अंध चुप्पे चंगा नानका विण नावे मोहे गंध महला पहला राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया।

कानक माध कपाह तोय हो त्रिपवन गन्ना तुआ आखे हो बो बिदह छा तुए बहुत बेकारा ए तेरा सुछोड़ हो ऐसन।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लै, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

गोपालराय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्र साला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्र गुप्त लेखिया तर्म राय।

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै घर कूरमा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह भार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै घर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंत।

कथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपयो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन आनंद भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगने आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाऊ मिथ्या भरम भरम बहु ब्रह्मया

परचै राम रविया घट अंतर, अस फिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन मीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह ना उतरे कबहू, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नान

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए दे हाथ रहाओ स्वामी भय निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग सात तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

देहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

पीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे, हर जप जपे।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास

कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधार है गोट पराधी खिन महतार है जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवां अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास।

रसन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मह मन प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पाई।

लभ देही। जा कौ सतगुर मया करे ही, अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा। जा कै हृदय बसह गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया। कहु नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा। भगत भगतन हूं बन आई, तन मन गलत भये ठाकुर स्यो।

तेरू जन हर जस सुनत उमायो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहु तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम कौ बन आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बाल तुम संग सुहेले।

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक हर रंग।

तो परम राख लीजै काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगै मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

मुचकार कानड़ा महला पंजवा ना जानी संतन प्रभ बिनयान ऊच नीच सब पेख समानो मुख बकनो मन मान रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास भयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भये तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए। काटे अज्ञान भरम मोह माया, लियो कंठ लगाए। कानड़ा महला पंजवां, आनंद रंग बनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण अधारे रहा।

आज्ञा दृष्टि आवत सब परगट, इहां मोहयो भरम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देव नहार दा तार बसेरो। कहो नानक एकै पार उसों, बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुमरै गाहियो, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मटाहयो, भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाध समाहयो। कौन कह तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहयो। कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिनसै मोह भरम दुख पीरै रहाओ। सिमरों दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन है सुख पाईऐ, साध जना मिल हर जस गाईऐ, रहाओ कर कृपा प्रभु हृदय बसेरो, चरण संतन कै माथा मेरो। पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ। करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दुख सगल मल हरसन, पावन धामन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूर्ण अबनासी, आन अपाव थकत नहीं करसन। कर गह लिए नानक जने अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा, कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ। अहं मत अनरत कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार बिदहीनत, मम मत मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उधर सरन परिया। कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाऊ, गोविंद त्याग आन लाग है, अमृतो डार भूम पाग है, बिखै रस स्यो असक्त मूडे, काहे सुख मान, काम क्रोध लोभ व्याप्यो, जन्म ही की खान, पतत पावन सरने आयो, उधर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा, अवलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ। चरण कमल हृदय तार, उतरिया दुख मंद, राज धन परवार मेरा, सर्ब सो गोविंद, साध संगम लाभ पायो, नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रभ पूजो नाम अराद, गुर सतगुर चरणी लाग, हर पाव हो मन आगाद, जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ। अनक पूजा

उत्तर करेर अठसठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्याह मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को नाम।

एक टुलेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक देव जगत गुर केरे कानला महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ आस प्यास सफल मूरत उमंग ही ओ तरस।

ईत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हटन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनों।

करो ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीत करह तुहारी

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मग्न अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवा कर दसवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ, दूत संग निवार, रहाओ, कोट जन्म जोन प्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई, मिलेओ नाम आधार, दलाब जन्म सफल नानक, पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुपाए अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण नदान प्रगट्यो एह चोलै, चरण लुभाए आनत जाए, थान थनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोलै, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्व समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरे, तौ मिलियो जो किरपाई, प्रभु दयार किरपार किरपा निद, जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद सासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन तूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्ब सु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

एक ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु। अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु। तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चवावै गु। राम नाम इक तिल तिल गावै।

कनक कनक पहरे बहु कंगना कापर पांत बनावे गुरु नाम बिना सब फीक फिकाने जन्म मरे फिर आवे गु माया पटल पटल है पहारी कर घूमन घेर कलावे गु पाप बकार मनूर सब पारी दिख दुत्तर तरयो ना जावे गु पौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावे गु राम नाम हर पेटी है हर राम नाम समावे गु अज्ञान लाए सवालिया

हर हर नाम तरावैगु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावैगु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावैगु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुर नाम त्यावैगु जन्म जन्म की हम मैं मल लागी मिल संगत मल लह जावैगु ज्यों लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावैगु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवैगु बिन संगत कर्म करे अभिमानी कड पानी कीकड़ पावैगु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावैगु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावैगु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावैगु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावैगु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावैगु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावैगु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावैगु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावैगु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावैगु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावैगु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावैगु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावैगु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावैगु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावैगु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावैगु बिदरदासी सुत शोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावैगु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावैगु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावैगु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावैगु ज्यों सत संगत तरियो जुलाहो संत जना मन पावैगु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावैगु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावैगु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावैगु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावैगु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावैगु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावैगु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै तह तह पावैगु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावैगु।

जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावै गु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखै हर लिव लावै गु सतगुर शब्द दे हृद अंतर मुख अमृत नाम चवावै गु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावै गु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावै गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावै गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावै गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावै गु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावै गु सुपनंतर संसार सब बाजी।

साकत नारद सतगुर नहीं पिया, ते बेमुख हर परमा वैगो, लोभ लहर सुवान की संगत, बिख माया करंग लगावैगो, राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावैगो, नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख

आई, जतन माया के काम न आई, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरह तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीव है हर अम्यो पीव है, जन्म मरना भागे, सतसंग पाई हर त्याई, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइय नित त्याइय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

आपे वर्तै सब जगत किया बनजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सत गुर कै पग पाह सत संगत हर मेल

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावह हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावह सुनह तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्यावहो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते, सदा सदा सते, जन नानक दास दसोना, श्लोक महला चौथा, हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरमंत, हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत, हर आपे घट घट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत, हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कबला कंत, हर आपे भिख्या पाएदा, सब सिष्ट उपाई जी जंत, हर देव दान दयाल प्रभ, हर मांग है हर जन संत, जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे है हर गुण शंत, महला चौथा, हर कब सज्जन नाम हर, मैं मन तन नाम शरीर, सब आसा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर धीर पौड़ी, हरि उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला, जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन सेवे चरण नित कौला, नित सार संभाले सब जी जंत, हर वसै नित सब जौला, सो बूझै जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला, सब गाव हो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे, गुण गावत गुणी समौला, श्लोक महला चौथा, सुत्या हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाध समाए, जन नानक हर हर चाओ मन, गुर तुठा मेले माए, महला चौथा, हर इकस सेती पिरहड़ी, हर इको मेरा चित, जन नानक एक आधार हर, प्रभ इकस ते गत पत, पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत, वडभागी अनहद वजिया, आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोविंद गजिया, आदि जगाद वेस हर एको, मत गुरमत हर प्रभ भजिया, हर देव दान दयाल प्रभ, जन राखो हर प्रभ लज्जिया, सब धन कहो गुर सत गुरु, गुर सत गुरु, जित मिल हर पड़दा कज्जिया, श्लोक महला चौथा, भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन, जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन, महला चौथा, हर हर नाम असंख हर, हर के गुण कथन ना जाहे, हर हर अगम अगाद हर, जन कित बिद मिलह मलाहे, हर हर जस जपत जपंत जन, एक तिल नहीं कीमत पाए, जन नानक हर अगम प्रभ, हर मेल लै हो लड़ लाए, पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर, क्यों कर हर दर्शन पिखा, किस वखर हुए सो वर्णिया, तिस रूप ना रिखा, जिस बजाए आप बजाए दे, सोई जन दिखा, सत संगत सतगुर चट साल है, जित हर गुण सिखा, तन तन सो रसना तन कर, तन सो पहधा सतगुरु, जित मिल हर लेखा लिखा, श्लोक महला चौथा, हर हर नाम अमृत है, हर जपिया सतगुर पाई, हर हर नाम पवित्र है, हर जपत सुनत दुख जाय, हर नाम तिन्नी आराध्या, जिन मस्तक लिखिया तुर पाए, हर दरगाह जन पैनाइयन,
जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हम वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरबचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसै जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जपियो मन कीता महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो भाग वसै बड़ भाग गुर पूरै देखा लिया नानक हर लिव लाग पौड़ी तन तन सुहावी सफल घड़ी जित हर सेवा मन पाणी हर कथा सुनावहु मेरे गुर सिखो मेरे हर प्रभ अकथ कहानी क्यों पाई है क्यों देखी है मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाणी तिन विटो नानक वारिया जो जप दे हर निर्बाणी सलोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाई नाम

नाम उपजै तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्लै पाई पौड़ी तुद आपे जगत पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता।

जग मोहन जिन जगत अपाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर होमै रोग है, भ्रम कूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम संघारवा।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस

तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरो दिन राति, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहा पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयु, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकै है प्रभ तुमन्थे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी,

मुखे सब तन मन अर्पौ अर्प अरापौ कोई मिले प्रभ मिलथे हर के गुण बहुत बहुत बहुत सोभा हम तुष कर कर बरंथे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे। कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे तह छूटै नाम त्याय थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुखहु मैं मैल लग थई गुरधार कृपा हर जल नवाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गावह हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुड थई। कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ

या की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

सगल भगत जाचह सुख सागर, भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे। ते निर्भउ जिन श्री राम ते आया, गुरमत मरार हर मुकंदे। जगदीश्वर चरण सरन जो आए, ते जन भावनिद पार परे। भगत जना की पैज हर राखै, जन नानक।

रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाउ ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंदरा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख लागे सगल जपह तरंगी।

सहन सर्वन सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाव एते उत दह दिस रवियो मेर तिन है समान जात कता तत पेखी है हर पुरख पत प्रधान साध

कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत एह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया।

मुर्गा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बनासन हर।

जुगत अलक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सत गुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यो मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत लर कीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भये साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

भली सेवनी की आन पानी सकत परिजै मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै गुण राम नाम बिस्थीरन किए हर सगल भवन जस दीजै साधु साध साध मन प्रीतम।

भवन पवे तहोए सब जह साधु चरण तरीजै तज लाज अहंकार सब तजियै मिल साधु संग रही जै धर्म राय की कान चकावै बिख डुबदा काड कड़ीजै परम सूके बहु उब सुख कही है मिल साधु संग हरीजै ताते बिलम पल ढिल ना कीजै जाए साधु चरण लगीजै राम नाम कीर्तन रतन वथ हर साधु पास रखीजै जो बचन गुर सत सत कर मानै तिस आगै काड तरीजै संतो सुनो सुनो जन पाई गुर काढी बाहां कुकीजै जे आत्म कौ सुख सुख नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवीजै जे वड भाग होए अत नीका ता गुरमत नाम दृढ़ीजै सब माया मोह बिखम जग तरीयै सहजे हर रस पीजै माया माया के जो अधकाई विच माया पचै पचीजै अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार भार लग

तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाउ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करो।

जित मुख तू सलाही है, तित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू, अवर भला संसार, जित तन नाम ना उपजै, से तन होहे खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे, शंकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध भये उदासी, देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए, तरिय साचा होई,

शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जाकै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जाकै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर प्रवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कही है सर्वे रहया समाई जो किछ वरतै सब तेरी रजाई रहाउ प्रगटी जोत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

पंच तस्कर तावत राखी चूका माने अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान हिमा तीर्ज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया।

जाय। जो किछ करह सोई पर होए बा, अवर न करना जाय रहाउ। जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है। तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर पर गास्ती, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी। कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण। जिसते हुआ सोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो प्रवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिसकै बल जाई। पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरै अजाई। बोलो सच नाम।

मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी कहो ना देखिया जाए खोटो पूठो।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाई प्रभाती।

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जन को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

मोहन आतरस लाल संगूढ़ो रहाउ ऊपर कूप गगन पनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहिया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावह चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहाउ ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराई बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डरपे गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाउ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है तीन ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार निह केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया अगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग का लाहा पहाई। सदा जन निर्मल मैल न लागै, सच नाम चित लाई। सुख शिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखोट भंडार भरे कदे तोट ना आवै, सदा हर सेव पाई। आपे करता जिसनो देवै, तिस वसै मन आई। नानक नाम त्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई।

सच्चा है शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्याहु जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै।

हुई। गुरमति मन निर्मल हुआ, अमृत तत्व खाने, हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन माने। सद बलिहारी गुरे अपने बिटो, जित आत्म राम पछाने। मानस जन्म सतगुरु ना सेविया, बिरथा जन्म गुआया। नदर करी ता सतगुर मेले, सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे भाग त्याया। प्रभाती महला तीजा, आपे भांत बनाए बहुरंगी।

राम कट कट पूर रहया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाउ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्ना हिरदय प्रगटिया जो गुर सरनाई भज पया इंद्री पंच पंचे वासियाण खिमा संतोख गुरमत पावे सो धन धन हर जन वड पूरा जो भय बैराग हर गुण गावे गुरते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बो संपो संचय जो किछ करे सो नरक परे एको शब्द एको प्रभु वरतै सब एकसते उत्पत चले नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सलाए पूरा भाग हुए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाउ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदर हो जाए आपे साचा लए मलाए गुर की बाणी स्यो लाए प्यार एथै उथै हो आधार आपे देवै सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा सोई भगत सुगड़ सुजाना नानक तिसकै सद गुरबाणा प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत लिव

हृदय अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइय प्रभ अपना, मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल है, सवरैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल, हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झारह हम बाल रहाओ, साकत को

जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक जिन हर हृदय नाम ना वस्यो तिन सब कारज फीक जैसे शिंगार करै देह मनुख नाम बिना नकटे नक कीक घट घट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब महईक जन नानक को हर कृपा तारी गुरबचन त्यायो करी मीक प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुखार हर नाम हम कहे पतत पावन हर नाम त्यायो सब किल विख पाप नहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायु गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाउ काया नगर नगर हर बस्यो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाद बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर धरियो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने ही अरै हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरपूरै हर नामा मन तन बसफा रहाउ काया नगर वसेउ घर मंदर जप सोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन भये सोहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनुपव हर हर हर लिव लागी हर उर तारियो गुर निमुख पा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पल फा तुमरे जान तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुख पा हर हर आप धरियो हर जन मह जन नानक हर प्रभ एक फा प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कड भा जप मन राम नाम अरधंबा उपजंप पाए ना पाईए कतहु गुर पूरै हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभाने पोत कलात मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन भा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुमन भा शका एक प्रभाती बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाउ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ सठ

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभ के

नानक उदर है जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, समत देव हो।

त्याग नाम हर गीदा इस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुईये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे पाए।

गुरपूरा पाइय वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा।

साध संग हुआ परगास, चरण कमल मन माहि निवास, जिन किया तिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसे

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाऊ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक भय निहाल प्रभाती महला पंजवां।

प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै एकै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै।

हर गुण गावे निज घर वास अमर पद पावे तां दर साचे सोभा पावे गुर सेवा बिन भगत ना होई अनेक जतन करे जे कोई हम मैं मेरा शब्द खोई निर्मल नाम वसै मन सोई इस जग में।

राम मन वसाय विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

अहं करन है खसम ना पावे साध बिन नावे होर कमावना फिक्का आवे साध दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई आवह जाहे मरह मर जाई।

मर जान। नानक नदरी नदर पछाण, प्रभाती महला पहला दखनी, गौतम तपा अहल्या स्त्री, तिस देख इंद्र लोभाया, सहस शरीर चिहन पग हुए, ता मन पछोताया, कोई जान न भूलै पहा।

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास। गुरमुख विरला चीने कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई। ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटे नाम संभाल। आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवै सोई। बिन गुर सूजी

हर जस कर्म धर्म पथ पूजा, काम क्रोध अग्नि मैं पूजा, हर रस चाखिया तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास, ज्यो पावै त्यो रखो अरदास, सच जिहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूट।

झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई रहाओ। मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख न जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लये सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हऊ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, किपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी।

बचकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

जन निर्मल हर कै नाम समाय, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर मह मन लोहट है मोहया दूजै पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाय, हर मंदिर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होय, प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करहै, हउमै मैल उतार सदा जागहै कर अपना राखहै, पंच तस्कर काढ़ह मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आय, जित मार्ग हर पाईऐ मन से ही कर्म कमाए रहाओ, गुरमुख सहज तुन उपजै दुख होमै विचों जाय, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाय, गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार, हउमै विच जागरण ना होवई हर

कीड़े विस्ताराते मर जमह होहे खुआर। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटो बल जाओ, तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ। पूरा भाग गुर पाईए उपाय किते ना पाया जाए, सतगुर ते सहज उपजे हउ मैं शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग, नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

हैडिक एक सकी सिर छाह वद पुरख स्वामी रहाल छल नागन स्यो मेरे टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कोराय अमृत नाम मन रहया अघाय लोभ मोह स्यो गई विखोट गुर कृपाल मोह कीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यो ठाठ न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यो हम भये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहुत पावस प्रभ सरबाग।

आसोए तिस बिन बीजो नाई कोए बैर बरोध शेडे पै परमा प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा महा तरंग ते कांड लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया अपने ठाकुर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तथाई जह सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ इशनान करीजा चरण कमल निमख हृदय तारी गोविंद जपत सब कार्य सारी उच्चे ते उच्चा प्रभ थान हर जन लाव है सहज ध्यान दास दासन की बांछो तूर सर्व कला प्रीतम भरपूर।

जो किश हुआ सो तेरा पाना, जो इव बूझे सो सहज समाना। कहत कबीर किल बिख गए छीना, मन पया जग जीवन लीना। प्रभाति अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस

कहिए सोई। अलह अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचार है। जो सब मह एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का भरम ना जाई रहा। पकर जियो आनिया देह बिनासी माटी को बिस्मिल किया। ज्योत स्वरूप अनाहत लागी कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया क्या मसीत सिर लाया। जो दिल में कपट नवाज गुजार हो क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया तिसका मर्म ना जानिया। कह कबीर पिस्त ते चूका दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर अदपत याद समाई। सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पहाई। ठाडा ब्रह्मा निगम बीचार अलख ना लखिया जाई रहाओ। तत तेल नाम किया बाती दीपक दे उजियारा। ज्योत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्बाणी।

आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकि अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म

सरन लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है रहाउ, सुपने ज्यों तन पछान, काहे पर करत मान, बारू की पीत जैसे।

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते।

कर्ता पुरुख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तनह किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुतह त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानकह मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेहे सो परसन माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं हर।

वर्तंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिंग नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुधा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलं हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालंग जिलंत दे दीप्य बैसवांतर है बहंत अगाहा तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निरतन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दातार है नानक गुर सेवा क्यंग ना लभ्यते अतरंग तरंग तारन है निरतनंग तन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है, सिमरंत नानक हर हर हरि, अनित्य है रचना निर्मोहते, दान परापूर्वेण पूचलते महीपते, विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते, वृथा अनुग्रहंग बिंद है, जस्य सिमरन रदंतर है।

पीवतं संतना तृप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बास नह सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमरता आवदह गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते असवराथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन कण

प्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टा सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सरूत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियं पूर्णं पुरख नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं।

पाल नाम रमंत गुण गोबिंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभ पूर्ण है निराश आस करन सगल अर्थ आलय गुण निधान सिम

भेद परमं साकत प्रिसनं ता सुर्जनः अस्थितं सोगहर्खं पै खीनं ता निर्पवः पै अत्मियं महानगरवासं धर्म लक्ष्यण प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हथ बलना बहुमर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है।

परमावण है। चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारण है। अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं

अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त शत्रुं दृढ़न्त अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर राध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरु हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करु शरीर स्वस्थ खीन समय

दुत्र है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत वच्छल अनाथ नाथी।

जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह सिदंत जठर रोग।

सिमरणं सर्वत्र जीवनः लब्धेहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतनः मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथारा।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियु शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रियतवं सात हतं परम बादं वर्त इत है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरण त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंग ता मेरंग सहकंग ता हरियंग बूडंग ता तरियंग ऊणंग ता परियंग अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माये कर्म कर

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोबिंद है नानक लब्धिहंग बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जाका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहर दै गुरमंत्रण है प्रीतम

कसों वरंगण है, रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया, संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा, हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा, आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है, हर हां मस्तक होवै भाग तां साजन पाई है, सखी काजल हार तंबोल सबै किस साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवै कंत तां सब किछ पाई है, हर हां कंतै बाज शिंगार सब बिरथा जाई है, जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे, तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे, हों सुती होए अचिंत मन आस पुराइया, हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया, आसां इती आस के आस पुराइया।